नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। साथ ही साथ यूं हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज़ यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज़, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता।
1: सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जनते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनाओ पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
4: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपड़े कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आयत की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलेस ने हमरा ने हाथे मली में जावू है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरा अपनावी, जानकारी सबनु हाथ ने अधिकार, आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बहनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: ભાઈ બનુ ગીત તો આશુ પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું સ્વાગત કરો હ અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે મેં આપને ગીત કે પહેલા વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હ કે આજે ખરીફનું સિઝન ચાલી રહ્યો હે અને મોસમ બદલાઈ ગયું હે સાટા પડી નથી રહ્યા તો એવા મેં આપણા જે ભાઈ બોન હે એ આપણી ફસલનું ધ્યાન હરતી રાખે ને એણાને હું હું કરવું શું હે આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહે હે પટેલજી અને દીપકજી તો સપ્તી કી વહેલે આપણે હામરી લેણાની વાતે ને મોરે કરા આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર
0: સર આપ દોનો કા મેં બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં જૈસા કે સર આપ દોનો સમય સમય પર હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કે સાથ કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જોડતે રહેતે હૈ ઓર ખેતી સે જુડી વિશેષ જાણકારી હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કો દેતે હૈ તાકિ સહી સમય પર કિયા ગયા સમાધાન ઉનકે લિયે કામ મેં આ સકે તો એસા હી એક વિષય આજ હમારે સાથ મેં જુડને જા રહા હૈ આજ હમ આપ દોનો કે માધ્યમ સે જાનને વાલે હૈ કે કિસ તરીકે સે યે ખરીફ કા જો સીઝન ચલ રહા હૈ બારિશ જો હૈ વો શરૂઆત મેં હમે દિખી લેકિન અભી કુછ દિનો સે હમ દેખ રહે હૈ કે બારિશ જો હૈ વો કમ હોતી નજર આ રહી હૈ એસે મેં કુછ કિસાન ભાઈ બહેન હૈ જિન્હોને ફસલો કી બુઆઈ કર દી હૈ તો ઉન્હેં કિન કિન વિશેષ બાતો કા ધ્યાન રખના હૈ તાકિ નુકસાન હોને સે વો બચ સકે
1: બિલકુલ અભી જૈસે મોસમ પરિવર્તન હો રહા હૈ ઓર મોસમ પરિવર્તન સ્વાભાવિક હૈ क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो मौसम परिवर्तन हो रहा है ज्यादा बारिश आती है कभी बारिश लंबी खींच जाती है तो अभी किसान भाइयों को बारिश का जैसे मौसम लंबा हो गया है तो खेती में क्या ध्यान रखना है विशेषकर जो किसान भाई ने अपनी खेती जैसे स्वाभाविक है अभी अपन खरीफ की फसल करते हैं दो तीन अनाज है एक साथ करते हैं दो तीन फसल है ना तो ये जो फसल बुआई करी है तो इसके अंदर निराई गुड़ाई करते हैं तो निराई गुड़ाई में जो उसके खरपतवार है खरपतवार को मल्चिंग के रूप में यदि उपयोग में ले लिया जाए तो उसमें नमी बनी रहेगी
0: जी जी
1: और नमी बनी रहेगी तो जल्दी उसकी जो फसल है वो मरेगी नहीं उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है और उसके साथ में जैसे अपना मक्की का पौधा सूख रहा है तो मक्की का पौधा सूख रहा है उसके अंदर कल्पी नहीं दी है तो यदि कल्पी देने लायक फसल नहीं हुई है और तो हाथ से भी निराई गुड़ाई कर देना बहुत जरूरी है
0: जी जी।
1: यदि सूख गई तो फिर उसको पानी की ज्यादा समस्या आएगी और वो फसल ज्यादा खराब होने का चांस हो सकता है
0: बिल्कुल
1: तो ये कुछ बातें ऐसी भी है
2: परंपरागत रूप से भी अगर देखा जाए तो बरसात में जब कहीं देर होती है या जब दो बरसात के बीच में समय बढ़ जाता है तो उन चीजों से निपटने के लिए या उन चीजों को ध्यान में रखकर के परंपरागत खेती में एक चीज तो ये रखी गई थी कि पहले बीज ज्यादा बोया जाता था बीज की मात्रा अधिक रखते थे ताकि वो सब जगह का मॉइस्चर को उपयोग में कर सके और उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे जब एक मिट्टी में अगर हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे मिट्टी को ऊपर नीचे नहीं करेंगे तो एक जो कैपिलरी एक्शन बन जाती है जिसकी वजह से वाष्पीकरण जल्दी तेजी से होता है तो उसको रोकने के लिए जब भी कभी ऐसा लगे कि बारिश देर से आने वाली है तो किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो एक तो फसल को थोड़ा थिन कर दें यानी कि फसल में जो जो अच्छे पौधे हैं उनको जिंदा रखें उनको रख लें और बाकी को निकाल करके चारे के रूप में यूज कर सकते हैं जैसा पटेल जी ने बताया कि उसको मल्चिंग के रूप में भी यूज किया जा सकता है ना पर अगर चारे के रूप में यूज करने लायक है तो पहले चारे पे ध्यान दिया जाए क्योंकि अभी पशुओं के लिए चारे का भी एक विषय बनता जा रहा है ना ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है पर इन सब से ऊपर की बात यह है कि हमें उस दिशा में भी सोचना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे उन्हें ये पता था कि बरसात में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता रहता है तो उन्होंने इस चीज को ये देखा कि हमें किसी एक फसल के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए और हमें सामूहिक रूप से कई सारी फसलों को एक साथ मिला करके करना चाहिए तो जिस फसल को बारिश कम चाहिए होती है वो अभी शायद ज्यादा अच्छे से हो सकती है जिसको पानी ज्यादा चाहिए होता है वो हो सकता है कि हम इस समय में कम हुआ है लेकिन मिश्रित खेती करने का एक फायदा ये रहेगा जैसे कि हमारे एरिया में तो शायद उसको हांगड़ी के रूप में भी बोलते हैं और कई सारी फसलों को एक साथ किया जाता है
0: बिल्कुल
2: तो ये सोचने वाला विषय है इस समय ये भी देखने का विषय है किसानों को कि वो इस फसलों के इस व्यवहार को देखने का कोशिश करें कि कौन सी फसल इस समय में अच्छी हो रही है
0: बिल्कुल
2: कौन फसल ऐसी है जो कि ज्यादा तकलीफ में आ रही है ताकि हम आने वाले समय में अगले समय की जब बात करें तो उस समय किसान कुछ सीख ले सके
0: बिल्कुल सर
1: बिल्कुल जैसे दीपक सर ने बताया कि भी अपन हांगड़ी खेती की बात करते हैं मिश्रित फसल की बात करते हैं लेकिन यहाँ पर जमीन का भी अलग अलग प्रकार है, जैसे पहाड़ी जमीन है जल्दी सूख जाती है, तो वहाँ पर फसल इस प्रकार की बोनी चाहिए। जैसे मिलेट्स बो दिया जाए, वो उसको यदि ज्यादा पानी नहीं भी मिला तो भी वो आसानी से पक जाता है। पाथरिया धान ने अंदर देखो तो पाथरिया है, उसको भी कम पानी चाहिए। तो पूर्वज और करते भी थे ऐसा, के भी कुरी करते थे, बावटा करते थे, रागी करते थे। तो फसल अपनी मिट्टी को ध्यान में रखते हुए, खेत को ध्यान में रखते हुए, किसमें कितनी नमी है उसको ध्यान में रखते हुए यदि फसल की बुआई की जाए, तो ये जो अंतर हो रहा है बारिश का, उसमें किसान को नुकसान नहीं झेलना पड़े और आराम से उसको आमदनी मिल सकती है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप दोनों हमें बहुत अच्छी जानकारी से अवगत करवा रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो हांगड़ी खेती कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी बार हम देखते हैं कि किसानों को ये समझ ही नहीं आता कि कौन सी फसल के साथ हम कौन सी फसल लगाएं और कितनी दूरी पर लगाएं, तो उसके बारे में आप दोनों का क्या कहना है?
2: ऐसा नहीं है कि किसान को ये बात समझ में नहीं आती है, ये जरूर है कि हम थोड़ा कुछ समय से अपने अभ्यास में नहीं लाने की वजह से इस पे भूल गए।
0: बिल्कुल,
2: है ना। लेकिन ये है कि अगर हम अपने काका बाबा दादी नानी या हमारे जो पूर्वज हैं, जो मतलब क्या कहना चाहिए कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन बड़े बुजुर्ग के साथ चर्चा करें तो हम ये निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी फसल किनके साथ जाती है, है ना। ये इसमें कोई मतलब ये अभ्यास का विषय है, और मुख्य रूप से ये जरूर देखा जाता है कि हमें थोड़ा सा ये देखा जा सकता है कि जैसे हमारी आवश्यकताएं क्या हैं।
0: बिल्कुल,
2: है ना। तो एक देखने का नजरिया होता है कि हमारी पोषण आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमारी आंगड़ी खेती है ना। तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, जिसमें की प्रोटीन भी हो सकता है, जिसमें तिलहन के भी होते हैं, तो तिलहन दलहन अनाज, है ना, आपका क्या कहते हैं पत्तीदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, तो ये सब एक कॉम्बिनेशन का विषय होता है।
0: जी जी।
2: और ये परंपरागत रूप से अगर आप खोजेंगे तो आपको आसपास में मिल जाएगा। कुछ जगह पर ये अलग अलग क्षेत्र में भी अलग अलग होता है।
0: बिल्कुल।
2: जैसे आप आनंदपुरी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर जालर होता है, है ना। लेकिन अगर आप कुशलगढ़ में जाएंगे तो वहाँ जालर नहीं होता है, और वहां पर जो है वालम ककड़ी उसके अंदर डाली जा रही है, या तुअर वहाँ डाली जा रही है। तो अलग अलग जगह में थोड़े बदलाव आते हैं, पर ये जरूर होता है कि अनाज भी है, दलहन भी है, तिलहन भी है, मूंगफली के रूप में है, कपास भी है, तो अलग अलग मिक्सिंग किया जाता है। और मुख्य रूप से उसमें देखा जा सकता है कि गहरी जड़ वाले, फैलने वाली जड़ वाले, और ऐसे अलग अलग जड़ों की लंबाई के हिसाब से, जड़ों के प्रकार के हिसाब से इनका चयन किया जाता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इसके लिए हमारे किसान भाई बहनों को अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास बैठकर बातचीत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सी बार हम देखते हैं कि अभी के समय में बहुत से जो लोग हैं वो इन सारी चीजों को समझना चाहते भी हैं, लेकिन प्रशिक्षण और सही जानकारी नहीं होने के कारण वो जो चीजें करते हैं उसमें नुकसान हो जाता है, और एक बार जब उन्हें नुकसान होता है तो वो ये सोचते हैं कि इसमें रखाई क्या है और वो पलायन कर जाते हैं। ऐसे में उन्हें चाहिए कि खेती के जो परंपरागत तरीके हैं वो इधर उधर से सुनकर या वागर रेडियो के माध्यम से, या अपने गाँव में कोई व्यक्ति इस तरीके की खेती कर रहा है तो उसके साथ जुड़कर भी इन सारी चीजों को वो ले सकते हैं और अपनी खेती में बदलाव कर सकते हैं।
2: बदलाव भी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि खेती में सुधार कर सकते हैं, है ना। और सुधार करने के अलावा ये कह सकते हैं कि खेती को पुनर्स्थापित कर सकते हैं।
0: जी जी बिल्कुल,
2: है ना। जो आप कह रहे हैं कि भाई जैसे कि उनका पलायन की तरफ मन बढ़ता जा रहा है और वो धीरे धीरे जो है खेती को एक अच्छा व्यवसाय के रूप में नहीं देख, तो मुझे श्लोक तो नहीं याद है लेकिन पुराने जमाने में ये कहावत होता था कि शायद सबसे सर्वश्रेष्ठ खेती को माना गया है, उसके बाद दूसरे नंबर पे और नौकरी तो तीसरे नंबर पे, और सबसे बेकार माना गया है मजदूरी करना, है ना। लेकिन अगर उल्टा आज की तारीख में उल्टा हो तो अब खेती को जो है लोग
1: उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी ऐसा कुछ बोला जाता था। बिल्कुल बिल्कुल,
2: अब उल्टा हो गया,
1: उल्टा हो गया, अब उत्तम नौकरी हो गई,
2: नीच मानने लगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: शायद ये बिल्कुल गलत है।
1: बिल्कुल,
2: है ना। तो खेती को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़े बुजुर्गों का एक पीढ़ी का दूसरे पीढ़ी के साथ में बैठना और इस खेती को सुधार करने की तरफ लेके जाना, ये चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो संवाद होंगे तभी सुधार होगा।
0: बिल्कुल सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है। तो इस तरीके से हमारे श्रोता साथियों को आज के कार्यक्रम की जो बातें हैं वो अवश्य पसंद आई होगी। तो आप दोनों कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: बस यही है कि अपने खेती को अपने लेवल पे और अपने परिवार के लेवल पे एक तरह से देखा जाए तो पुनर्स्थापित करने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं उनको किया जाए, साथ ही साथ में उसको इस रूप से देखा जाए कि यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके ऊपर पूरा दारोमदार टिका है।
0: बिल्कुल,
2: कृषि नहीं है तो पोषण नहीं है, पोषण नहीं है तो स्वास्थ्य नहीं है, और स्वास्थ्य नहीं है तो आपका कोई कमाई भी किसी काम का नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: और साथ में नमी बनाए रखने के लिए श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि रासायनिक खाद का प्रयोग कम करें और देसी खाद, उकड़े का खाद, इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो ऐसे जो बारिश लंबी जाएगी तो नमी बनी रहेगी।
0: बिल्कुल,
1: और जितना रासायनिक खाद डालेंगे तो हो सकता है इसमें नमी कम रहेगी और फसल का दुरुपयोग होगा।
2: कुछ चीजें ऐसी भी है जैसे कि अभी खास तौर पे अभी चूंकि बारिश खिंच रही है ना, तो ऐसी स्थिति में दो तीन चीजों का बहुत किसान बिल्कुल ध्यान रखें, रासायनिक खाद हो, रासायनिक कीटनाशक हो, किसी भी प्रकार के रासायनिक चीज का अभी उपयोग करना कतई ना करें, क्योंकि वो उनकी फसल के लिए घातक हो सकता है।
0: बिल्कुल।
2: दूसरी तरफ ये है कि निंदाई गुड़ाई जरूर करें, है ना, इस समय निंदाई गुड़ाई पे ध्यान देना जरूरी है, बाकी सब चीजें बाद में हो सकती है, ये समय अगर फसल को नहीं बचाया तो फिर पूरा सीजन चला जाएगा।
0: बिल्कुल। तो सर, मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: માઇન બોનું સિમ કે આવડે આપણે વેસ મેં દીપકજી ને પટેલજી સર જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હે। આશા કરો હો કે આ સબ વાતે આપને કમી હોંગા કેમ કે વે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડ પણ સાથે પહેલા હામરી લે એક ઓર ગીત ને મોરે પડો સૂટા।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं

0: साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में कशिश आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है रटने की बजाय समझकर सीखने की आदत कैसे विकसित करें। हम देखते हैं कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छा रहे अच्छे अंक लाए जीवन में आगे बढ़े लेकिन कई बार पढ़ाई का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना बनकर रह जाता है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चे किताबों के उत्तर याद कर लेते हैं लेकिन जब वही बात व्यवहार में लागू करने या अपने शब्दों में समझाने की बारी आती है तो वे असमंजस में पड़ जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: इसका सबसे बड़ा कारण है रटकर पढ़ने की आदत।
1: जी हाँ दिलीप जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
0: जी जी,
1: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवा दे पहले।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो आपको बता ही चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि रटने की बजाय समझकर सीखने की आदत हम बच्चों में कैसे विकसित कर सकते हैं। जैसा कि अंजलि जी आपने बताया था कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छे अंक लेकर आए और जीवन में बहुत आगे बढ़े, लेकिन कई बार पढ़ाई का उद्देश्य केवल परीक्षा प्राप्त करना बनकर ही रह जाता है और बच्चे रटने लग जाते हैं। तो ऐसे में श्रोता साथियों, रटकर पढ़ना कुछ समय के लिए परीक्षा में मदद कर सकता है, लेकिन ये ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने, सोचने की क्षमता विकसित करने और जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने में उतना उपयोगी नहीं माना जाता।
1: बिल्कुल।
0: इसके विपरीत हम देखते हैं अंजलि जी कि जब बच्चा किसी विषय को समझकर सीखता है तो वह उसे लंबे समय तक याद रखता है।
1: जी हाँ।
0: उसका सही उपयोग करना सीखता है, नए प्रश्नों का उत्तर भी आत्मविश्वास के साथ वह दे पाता है।
1: बिल्कुल कशिश, यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि बचपन वह समय है जब बच्चों के मन में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है।
0: बिल्कुल।
1: वे हर बात पूछना चाहते हैं, आसमान नीला क्यों है, बारिश कैसे होती है, पौधे कैसे उगते हैं, पक्षी कैसे उड़ते हैं, लेकिन कई बार हम उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के बजाय जल्दी से उत्तर देकर यह कह देते हैं कि इतने सवाल मत पूछो।
0: बिल्कुल।
1: उनकी सीखने की स्वाभाविक इच्छा कम कर देती है, जबकि यही प्रश्न पूछने की आदत उन्हें समझकर सीखने की दिशा में आगे बढ़ाती है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चों में सोचने, समझने, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना भी है।
0: बिल्कुल।
1: यदि बच्चा केवल उत्तर याद करता है तो परीक्षा के बाद उसे भूल सकता है, लेकिन यदि कशिश वह विषय का अर्थ समझ लेता है तो वही ज्ञान जीवन भर उसके काम आता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अब यही अगर श्रोता साथियों को हम बताएं तो कह सकते हैं कि रटने की आदत कई कारणों से विकसित होती है। कभी श्रोता साथियों परीक्षा में अच्छे अंक लाने का दबाव बच्चों पर रहता है, कभी समय की कमी, कभी पढ़ाने का तरीका और कभी माता पिता की अपेक्षाएं। अंजलि जी, ये सभी चीजें बच्चों को केवल याद करने की ओर ही धकेल देती है। कई बच्चे ये सोचने लगते हैं कि जितना अधिक याद करेंगे उतना अधिक सफल होंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन वास्तविक सफलता केवल याद रखने में नहीं है, बल्कि समझने और सही उपयोग करने में है। माता पिता इस आदत को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो कैसे साथियों? तो जब बच्चा पढ़ाई करे तो उसे केवल यह न पूछे कि पाठ याद हुआ या नहीं, बल्कि ये पूछे कि तुमने आज क्या नया सीखा है।
1: बिल्कुल।
0: या तुम इसे शब्दों में समझा सकते हो मुझे? ऐसे प्रश्न श्रोता साथियों बच्चों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करते हैं।
1: बिल्कुल। इसी के साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि घर में पढ़ाई को केवल किताबों तक सीमित न रखें। यदि बच्चा पौधे के बारे में पढ़ रहा है तो उसे बगीचे में ले जाएं। यदि वह पानी के महत्व के बारे में पढ़ रहा है तो घर में पानी बचाने के छोटे छोटे तरीके अपनाने को कहें। यदि वह गणित सीख रहा है तो रोजमर्रा की खरीदी या घर के छोटे हिसाब किताब में उसे शामिल करें। जब पढ़ाई का संबंध जीवन से जुड़ता है कशिश, तो सीखना आसान और रोचक बन जाता है, और इसमें शिक्षकों की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि कक्षा में बच्चों को केवल उत्तर याद करने के बजाय प्रयोग, कहानी, चित्र, गतिविधियां और चर्चा के माध्यम से पढ़ाया जाए तो बच्चे विषय को अधिक गहराई से समझते हैं।
0: जी जी।
1: जब शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने, अपने विचार रखने और गलत उत्तर देने पर भी प्रोत्साहित करते हैं, तब बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सीखने को बोझ नहीं बल्कि आनंद समझने लगते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही है, और जैसा कि बातचीत का विषय भी काफी महत्वपूर्ण है हमारे माता पिताओं के लिए कि किस प्रकार से बच्चों को हम रटने से ज्यादा समझने की आदत विकसित करवाएं, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने शिक्षकों की भूमिका के बारे में जाना था, यही अब बात आती है कशिश के, हमें ये भी समझना होगा कि हर बच्चा एक जैसा नहीं सीखता। कोई देखकर जल्दी सीखता है, तो कोई सुनकर, तो कोई लिखकर, तो कोई करके। इसलिए बच्चों की तुलना करने के बजाय उसके सीखने की शैली को समझना अधिक आवश्यक है। यदि हम हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर दें, तो वह बेहतर परिणाम दे सकता है।
1: बिल्कुल।
0: आज मोबाइल और इंटरनेट के दौर में जानकारी प्राप्त करना आसान हो गया है, लेकिन कशिश जानकारी और ज्ञान में अंतर होता है। केवल जानकारी इकट्ठा कर लेना पर्याप्त नहीं, उस जानकारी को समझना, परखना और सही जगह उपयोग करना ही वास्तविक शिक्षा है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए बच्चों को केवल उत्तर खोजने की नहीं, बल्कि उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया समझाने की आदत डालनी चाहिए। बच्चों में कहानी पढ़ने की आदत भी समझाने की क्षमता बढ़ाती है।
1: बिल्कुल।
0: कहानी पढ़ते समय बच्चा पात्रों के बारे में सोचता है, घटनाओं को जोड़ता है और अपने मन में चित्र बनाता है। इससे श्रोता साथियों, उसके कल्पना शक्ति, भाषा और तर्क शक्ति का विकास होता है। इसी तरह पहेलियां, विज्ञान के छोटे प्रयोग, शैक्षणिक खेल और समूह में चर्चा जैसी गतिविधियां भी बच्चों को रटने के बजाय समझने की दिशा में आगे बढ़ाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बच्चों को गलती करने का अवसर दिया जाए, क्योंकि जब बच्चा गलती करता है तो उसे समझकर वह सुधारता है और तभी उसे वास्तविक सीख मिलती है। यदि अंजलि जी हर गलती पर डांट मिलेगी तो बच्चा केवल सही उत्तर याद करने की कोशिश करेगा, सीखने की नहीं। इसलिए घर और स्कूल दोनों जगह ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ गलती को असफलता नहीं बल्कि सीखने का अवसर माना जाए।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफल होना नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन को समझना और उसे बेहतर बनाना भी होना चाहिए। क्योंकि अंजलि जी, जब बच्चे समझकर सीखते हैं तो वे केवल किताबों के विद्यार्थी नहीं रहते, बल्कि जीवन के विद्यार्थी बन जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वे हर परिस्थिति में सोचते हैं, सवाल पूछते हैं और नए नए समाधान खोजते हैं, साथ ही आत्मविश्वास के साथ आगे भी बढ़ते हैं।
0: जी हाँ। इसी के साथ श्रोता साथियों, हम बच्चों पर केवल अंक लाने का दबाव न डालें, बल्कि उनमें सीखने का आनंद जगाएं, उन्हें प्रश्न पूछने दें, प्रयोग करने दें, गलती करने दें और अपने अनुभवों से सीखने दें। क्योंकि रट कर सीखा हुआ ज्ञान कशिश समय के साथ धुंधला पड़ सकता है, लेकिन समझ कर सीखी गई हुई बातें जीवन भर मार्गदर्शन बनती है। बच्चों को केवल उत्तर याद कराना आसान है, लेकिन उन्हें सोचने की आदत देना सबसे बड़ी सीख है।
1: जी हाँ।
0: जब बच्चे समझकर सीखना शुरू करते हैं श्रोता साथियों, तभी वे आत्मविश्वासी, रचनात्मक, जिम्मेदार और जीवन की चुनौतियों का सामना करने वाले सच्चे शिक्षार्थी बनते हैं। यही आदत उन्हें केवल एक अच्छा विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि एक जागरूक, संवेदनशील और सफल इंसान भी बनाती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल उन्हें किताबों का ज्ञान देना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनाना है, जो हर परिस्थिति को सोच सके, समझ सके और सही निर्णय ले सके। साथ ही अपने ज्ञान का उपयोग अंजलि जी समाज के हित में भी कर सके। साथियों, यदि हम अपने बच्चों को बचपन से ही केवल उत्तर याद करने की आदत डलवा देंगे तो वे परीक्षा को तो पास कर लेंगे, लेकिन जीवन की उन परिस्थितियों में असहज हो जाएंगे जहाँ तैयार उत्तर नहीं होते। वही जो बच्चा समझकर सीखता है, वह हर नई चुनौती को सीखने के अवसर

0: के रूप में देखता है।
1: बिल्कुल।
0: और आत्मविश्वास के साथ आगे भी बढ़ता है।
2: बिल्कुल कशिश, हमारे लिए ये भी समझना जरूरी है कि सीखना किसी एक किताब, एक कक्षा या एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो घर, विद्यालय, खेल के मैदान, प्रकृति, समाज और रोजमर्रा के अनुभवों से मिलकर पूरी होती है। जब माता पिता बच्चों को हर छोटी बात का कारण समझाते हैं, जब शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जब परिवार बच्चों की जिज्ञासा का सम्मान करता है, तब सीखना केवल पढ़ाई नहीं रहता बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है। आज के समय में जानकारी की कोई कमी नहीं है। मोबाइल और इंटरनेट पर हर सवाल का जवाब कुछ ही क्षणों में हमें मिल जाता है। लेकिन असली चुनौती उत्तर ढूंढना नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि सही और गलत में अंतर समझना है, तथ्यों को परखना है और उन्हें सही संदर्भ में उपयोग करना है। यही क्षमता समझकर सीखने से विकसित होती है। इसलिए बच्चों को केवल जानकारी देने के बजाय उन्हें विचार विश्लेषण करना और अपनी समझ बनाना भी सिखाना होगा। हमें बच्चों की सफलता को केवल परीक्षा के अंकों से नहीं मापना चाहिए। एक बच्चा जो अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकता है, नई परिस्थितियों में समाधान खोज सकता है, दूसरों के विचारों का सम्मान करता है और हर दिन कुछ नया सीखने की इच्छा रखता है, वह वास्तव में शिक्षित है।
0: बिल्कुल।
2: ऐसी शिक्षा ही उसे आत्मनिर्भर, रचनात्मक और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथियों, ऐसे में हम सभी को मिलकर घरों और विद्यालयों में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ बच्चों से केवल ये नहीं पूछा जाए कि आज कितना याद किया, बल्कि ये भी पूछा जाए कि आज क्या समझा गया, आज क्या सीखा और उस सीख का उपयोग आप कहाँ करोगे। श्रोता साथियों, यही छोटे छोटे बदलाव बच्चों के सीखने के तरीकों को बदल सकते हैं और उनके भीतर आजीवन सीखते रहने की आदत भी विकसित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि रटी हुई बातें समय के साथ भूल सकते हैं, लेकिन समझकर सीखा गया ज्ञान व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है।
1: जी हाँ।
0: जब बच्चों के मन में अंजलि जी जिज्ञासा, समझ और सीखने का आनंद जागेगा, तब शिक्षा उन्हें बोझ नहीं लगेगी बल्कि उनके सपनों को दिशा देने वाली रोशनी बन जाएगी। हम ऐसी शिक्षा का वातावरण बनाए साथियों जहाँ बच्चे केवल किताबों के उत्तर याद न करें बल्कि जीवन के प्रश्नों का उत्तर खोजने की क्षमता भी विकसित करें। यही सच्ची शिक्षा है, यही सफल बचपन की पहचान है और यही एक जागरूक, सक्षम और संवेदनशील समाज की सबसे मजबूत नींव है।
2: बिल्कुल। तो इस तरीके से आज के शेष कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
2: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है अंतरिक्ष विज्ञान और युवा सपनों की नई ऊंचाइयों की ओर को लेकर।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि कशिश, आसमान सीमा नहीं बल्कि नई शुरुआत है, और ये कथन आज के भारत के युवाओं के लिए पूरी तरह सार्थक सिद्ध हो रहा है।
0: बिल्कुल,
1: कभी अंतरिक्ष केवल कल्पनाओं, कहानियों और विज्ञान कथाओं का विषय माना जाता था, लेकिन आज अंतरिक्ष विज्ञान मानव जीवन की वास्तविकता बन चुका है। भारत ने भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है और विश्व के अग्रणी अंतरिक्ष देशों में अपनी पहचान भी बनाई है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान के युवा सपने क्या है और ये नई ऊंचाइयों को किस प्रकार से छू रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना श्रोता साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा पहले गीत सुनवा दे हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान के युवा सपने और नई ऊंचाइयों को लेकर।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, जब हम रात के आकाश में चमकते सितारों, चांद और ग्रहों को देखते हैं तो हमारे मन में ढेर सारे प्रश्न उठते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम सोचते हैं कि आखिर इन तारों के पार है क्या, क्या वह जीवन है या फिर क्या इंसान इससे आगे पहुंच सकता है।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब खोजने का नाम है अंतरिक्ष विज्ञान। आज भारत, जैसा कि आपने बताया था कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी शक्तियों में से शामिल है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 और गगनयान जैसे मिशनों ने यह साबित कर दिया है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। ऐसे समय में जागृति जी, युवाओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान केवल एक विषय नहीं है बल्कि नए अवसरों, नई सोच और नए भविष्य का द्वार बन चुका है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि आज का युवा केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं है कशिश, बल्कि वो वैज्ञानिक, शोधकर्ता, इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री और नवाचारकर्ता बनने का सपना देख रहा है।
0: बिल्कुल,
1: अंतरिक्ष विज्ञान युवाओं के लिए केवल एक विषय नहीं श्रोताओं, बल्कि असीम संभावनाओं का द्वार है। ये उन्हें बड़े सपने देखने, नई खोज करने और मानवता के भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। हम देखते हैं कशिश की अंतरिक्ष विज्ञान वो विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के बाहर मौजूद ग्रह, तारे, उपग्रह, आकाश गंगाओं, ब्रह्मांड और अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें रॉकेट तकनीक, उपग्रह निर्माण, अंतरिक्ष यान, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और नई वैज्ञानिक खोजें शामिल है।
0: बिल्कुल,
1: आज अंतरिक्ष विज्ञान केवल वैज्ञानिक प्रयोगों तक सीमित नहीं है श्रोताओं, बल्कि इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान, संचार शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा अनेक क्षेत्रों में हो रहा है।
0: बिल्कुल जागृति जी, और हम देखते हैं कि भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद भी अंतरिक्ष विज्ञान में अद्भुत सफलता प्राप्त की है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा इसरो की स्थापना हुई थी। शुरुआत बहुत ही साधारण थी जागृति जी, लेकिन वैज्ञानिकों की मेहनत और दृढ़ संकल्प ने भारत को एक नई पहचान दिलाई। सबसे पहले श्रोता साथियों, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। इसके बाद कई सफल उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। वहीं वर्ष 2014 में भारत का मंगलयान पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया।
1: बिल्कुल,
0: जो विश्व के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद श्रोता साथियों, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके भारत का नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। वहीं आदित्य L1 मिशन के माध्यम से सूर्य का अध्ययन भी किया जा रहा है और गगनयान मिशन भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारी कर रहा है। यानी कि जागृति जी, इन सभी उपलब्धियों ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत का युवा किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि भारत की अंतरिक्ष यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक है। सीमित संसाधनों के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल

0: पर विश्व को अपनी क्षमता का परिचय दिया है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत छोटे छोटे प्रयोगों से हुई थी, लेकिन आज भारत ने चंद्रमा और मंगल तक सफल मिशन भेजकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है।
1: बिल्कुल,
0: भारत की प्रमुख उपलब्धियां आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण, PSLV और GSLV जैसे विश्वसनीय प्रक्षेपण यान, मंगलयान मिशन, चंद्रयान मिशन, आदित्य L1 मिशन, गगनयान मिशन की तैयारी और सैकड़ों विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण, इन उपलब्धियों ने भारतीय युवाओं के आत्मविश्वास को नई उड़ान दी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बहुत अच्छी तरीके से ये बात कर ही रहे हैं कि किस प्रकार से अंतरिक्ष विज्ञान के जो युवा सपने हैं वो आज पूरे हो चुके हैं।
0: बिल्कुल,
1: और आगे भी ये बातें हमारी श्रोता साथियों से ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी अंतरिक्ष विज्ञान और युवा सपनों की नई ऊंचाइयों को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: यही बात करते हैं कशिश हमारे श्रोता साथियों को। हम बताते हैं कि युवाओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों, हम देखते हैं कि आज विज्ञान और तकनीक का युग है। आने वाला समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष अनुसंधान और नई तकनीकों का होगा। ऐसे में युवाओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान बहुत सारे अवसर लेकर आया है।
1: बिल्कुल,
0: अंतरिक्ष विज्ञान युवाओं को वैज्ञानिक सोच विकसित करना सिखाता है, जिज्ञासा और खोज की भावना बढ़ाता है, समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता देता है, नवाचार और अनुसंधान के लिए प्रेरित करता है, साथ ही आत्मविश्वास और धैर्य विकसित करता है और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का अवसर देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अब प्रश्न ये उठता है कि अंतरिक्ष विज्ञान युवाओं के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है।
0: बिल्कुल,
1: तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का युवा केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि नई नई खोज करना चाहता है, नया आविष्कार करना चाहता है और दुनिया को बदलने का सपना देखता है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान ने युवाओं को यही अवसर दिया है। यह विज्ञान जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करते हैं और नई तकनीकों के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं युवाओं को।
0: बिल्कुल,
1: हम देख सकते हैं कि जो युवा अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ते हैं वे केवल वैज्ञानिक ही नहीं बनते बल्कि इंजीनियर, डेटा विश्लेषक, कंप्यूटर विशेषज्ञ, रोबोटिक्स इंजीनियर, गणितज्ञ, डिजाइनर और शोधकर्ता भी बन सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि युवाओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में ढेर सारे ऐसे रोजगार के अवसर हैं जो युवा साथियों को सफल व्यक्ति बनने में मदद करते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, हर युवा के मन में कुछ बड़ा करने का सपना होता है। पहले लोग डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बनने का सपना देखते थे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आज युवा अंतरिक्ष वैज्ञानिक, सैटेलाइट इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखते हैं।
1: जी हाँ,
0: साथ ही ये बदलाव भारत की वैज्ञानिक प्रगति का प्रमाण है। आज हम देख रहे हैं कि देश के अनेक विद्यालय और महाविद्यालयों में विज्ञान मेलों, रोबोटिक्स प्रतियोगिताएं, अंतरिक्ष क्लब और नवाचार प्रयोगशालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को नई दिशा मिल रही है।
1: बिल्कुल,
0: अक्सर लोगों को लगता है कि अंतरिक्ष विज्ञान केवल वैज्ञानिकों के लिए होता है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। श्रोताओं, आज हमारे मोबाइल फोन, GPS, इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा, मौसम की जानकारी, टीवी प्रसारण, डिजिटल बैंकिंग, कृषि सलाह और आपदा चेतावनी, ये सारी अनेक सुविधाएं अंतरिक्ष तकनीक की देन है।
1: बिल्कुल,
0: किसानों को मौसम की जानकारी मिलती है, मछुआरों को समुद्र की स्थिति का पता चलता है, आपदा आने से पहले लोगों को चेतावनी मिल जाती है कशिश, और साथ ही श्रोताओं, दूर दराज क्षेत्रों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुंच रही है।
1: जी बिल्कुल,
0: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान आम नागरिक के जीवन को बेहतर बना रहा है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। साथ ही देखते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान हमें ये भी सिखाता है कि असफलता कभी अंत नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: साथियों, भारत का पहला चंद्र मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसके बाद भी हार नहीं मानी। जागृति जी, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है और चंद्रयान 3 को सफल बनाया, और यही संदेश युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि परीक्षा में असफलता मिले साथियों, यदि नौकरी न मिले, यदि जीवन में कठिनाइयां आ जाए, तो रुकना आपको नहीं है बल्कि नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि भारत का युवा आज स्टार्टअप संस्कृति से जुड़ रहा है। कई युवा छोटे छोटे उपग्रह बनाने, ड्रोन तकनीक विकसित करने और नई अंतरिक्ष तकनीकों पर कार्य कर रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, सरकार और कई संस्थाएं युवाओं को शोध, नवाचार और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। आज निजी क्षेत्र भी अंतरिक्ष अनुसंधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
1: जी हाँ,
0: इससे रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आपको कहना चाहेंगे श्रोताओं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ये जो कार्य है वो चुनौतियों से भी कम नहीं है। अंतरिक्ष विज्ञान जितना आकर्षक है उतना ही कठिन भी है कशिश।
1: बिल्कुल,
0: इसके सामने कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि महंगी तकनीक, लंबा शोध कार्य, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा की आवश्यकता, वैज्ञानिक संसाधनों का विकास, अंतरिक्ष मलबे की समस्या, पर्यावरणीय चुनौतियां और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। साथ ही इन चुनौतियों का सामना केवल मेहनत, अनुसंधान और नवाचार से ही किया जा सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का भविष्य हमारे युवाओं के हाथ में है। यदि युवा विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करेंगे तो नई तकनीकों को वो सीख पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: जिसके कारण दोस्तों कई शोध की दिशा में वे आगे बढ़ पाएंगे और भारत विश्व में और अधिक मजबूत और वैज्ञानिक राष्ट्र बन सकता है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में हमारे युवा साथियों को चाहिए कि वे विज्ञान विषयों को रुचि से पढ़ें, गणित और कंप्यूटर का ज्ञान बढ़ाएं, विज्ञान प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहें, साथ ही नई खोज करने का साहस रखें। हम देखते हैं जागृति जी कि अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रामीण युवाओं के लिए भी ढेर सारे अवसर हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे युवाओं को लगता है कि अंतरिक्ष विज्ञान केवल बड़े शहरों के विद्यार्थियों के लिए ही है, लेकिन ये सोच गलत है। आज साथियों, इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पुस्तकालय, विज्ञान चैनल और सरकारी योजनाओं के माध्यम से गांव का युवा भी अंतरिक्ष विज्ञान सीख सकता है।
0: बिल्कुल,
1: देश के अनेक वैज्ञानिक छोटे गांवों और सामान्य परिवारों से निकलकर साथियों विश्व स्तर तक पहुंचे हैं। इसलिए प्रतिभा किसी शहर या आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं होती।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि भारत के अनेक वैज्ञानिकों ने अपने संघर्ष और समर्पण से युवाओं को प्रेरित किया है। साधारण परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है।
1: बिल्कुल,
0: उनका जीवन ये संदेश देता है श्रोताओं की सफलता संसाधनों से नहीं बल्कि मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से मिलती है।
1: जी हाँ,
0: अंतरिक्ष विज्ञान केवल ग्रहों और तारों की खोज नहीं है बल्कि मानव क्षमता, जिज्ञासा और साहस का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि यदि हमारे सपने बड़े हों और उन्हें पूरा करने का संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। आज भारत का युवा नई सोच, नई ऊर्जा और नई तकनीक के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: उसके सपने केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्र की प्रगति और मानवता के कल्याण से जुड़े हुए हैं।
1: जी हाँ,
0: यही युवा आने वाले समय में भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान, नवाचार और विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसलिए हमें विश्वास रखना होगा श्रोताओं कि सपने तभी साकार होते हैं जब उनमें ज्ञान का प्रकाश, परिश्रम की शक्ति और देश के प्रति समर्पण का भाव जुड़ा हो।
1: बिल्कुल,
0: यदि प्रत्येक युवा विज्ञान को अपनाकर नवाचार की राह पर आगे बढ़े कशिश, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा। तब सचमुच हमारे युवाओं के सपने धरती की सीमाओं से निकलकर अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और भारत ज्ञान, विज्ञान तथा आत्मनिर्भरता के नए युग का मार्गदर्शक बनेगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बात है आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा आज का एक कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: देती है। क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है तिरंगे का सम्मान, राष्ट्र का अभिमान। अंजलि, जिस ध्वज की तीन रंगों वाली छाया में करोड़ों भारतीय एक सूत्र में बंध जाते हैं, जिस तिरंगे को देखकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, वो केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम, बलिदान, संविधान और राष्ट्रीय स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है।
0: बिल्कुल,
1: तिरंगे का सम्मान केवल एक औपचारिकता नहीं दोस्तों, बल्कि हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। जब हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, तब हम अपने राष्ट्र, अपने वीर शहीदों और अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सम्मान करते हैं।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और बात भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं तिरंगे का सम्मान राष्ट्र का अभिमान को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि, जिस राष्ट्र का ध्वज ऊंचा रहता है उस राष्ट्र का आत्मसम्मान सदैव ऊंचा रहता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्रिय तिरंगा, केवल 3 रंगों से बना एक कपड़ा नहीं है दोस्तों, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था का विषय है। आस्था, त्याग, संघर्ष, स्वतंत्रता, संविधान और राष्ट्रीय एकता का जीवन प्रतीक भी है। अंजलि, जब तिरंगा हवा में लहराता है तब उसके साथ हर भारतीय का हृदय भी गर्व से भर उठता है। इसकी प्रत्येक लहर हमें उन वीर सपूतों की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सच्चे स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सच्चा स्वराज तब पूर्ण होता है जब प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे। तिरंगे का सम्मान करना ऐसा ही एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य है। राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना केवल शब्दों से नहीं श्रोता साथियों, बल्कि अपने व्यवहार, विचार और कर्मों से प्रकट होती है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं था, बल्कि वह आजादी की आशा और संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। अनेक स्वतंत्रता सेनानी इसी ध्वज को हाथ में लेकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। 22 जुलाई 1947 को जागृति जी, संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। और 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा गर्व से लहराया था।
0: बिल्कुल,
1: ऐतिहासिक क्षण ने यह संदेश दिया कि भारत अब स्वतंत्र है और अपनी पहचान स्वयं बनाएगा। तब से लेकर श्रोता साथियों आज तक तिरंगा हमारे राष्ट्रीय गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है।
0: बिल्कुल अंजलि, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रत्येक रंग जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश हमें देता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग साहस, त्याग, वीरता और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। श्रोताओं, ये हमें सिखाता है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने स्वार्थ का त्याग करना होगा। बीच का सफेद रंग सत्य, शांति, पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक है।
1: बिल्कुल,
0: ये हमें जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने, समाज में सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इसी के साथ नीचे का हरा रंग प्रकृति, समृद्धि, कृषि, विकास और खुशहाली का प्रतीक है। ये हमें पर्यावरण संरक्षण तथा संतुलित विकास का संदेश देता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, ध्वज के मध्य स्थित नीले रंग का अशोक चक्र, जिसमें 24 तिल्लियां हैं, निरंतर कर्म, न्याय, प्रगति और गतिशील जीवन का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन और राष्ट्र दोनों तभी आगे बढ़ते हैं जब कर्म निरंतर चलता रहता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि भारत अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं और धर्मों वाला देश है। इतनी विविधताओं के बावजूद जो हमें एक सूत्र में बांधता है वह है हमारा तिरंगा।
0: जी हाँ।
1: जब राष्ट्रीय पर्वों पर पूरा देश तिरंगे के नीचे एकत्र होता है तब यह संदेश मिलता है कि हमारी सबसे बड़ी पहचान भारतीय होना है। तिरंगा किसी एक धर्म, जाति या क्षेत्र का नहीं श्रोता साथियों, बल्कि पूरे भारत का ध्वज है। यह हमें समानता, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं तिरंगे के सम्मान को लेकर, राष्ट्र के अभिमान को लेकर, ये बातें निरंतर आज के इस कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से तिरंगे का गौरवशाली इतिहास रहा और तीन रंग जो है वो किस तरीके से हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। यही बात आती है जागृति जी, शहीदों के बलिदान की अमर कहानी की। श्रोता साथियों, आज हम जिस स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं वह लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है।
1: बिल्कुल,
0: भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, असंख्य ज्ञात अज्ञात वीरों ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है।
1: जी हाँ।
0: सीमा पर आज भी हमारे सैनिक तिरंगे की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर देते हैं। उनके बलिदान के कारण ही जागृति जी हमारा राष्ट्रीय ध्वज गर्व से लहराता है। इसलिए तिरंगे का सम्मान करना उन सभी वीरों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।
1: बिल्कुल अंजलि, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है। तिरंगे का सम्मान केवल कानून का पालन नहीं है दोस्तों, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का परिचायक है।
0: जी जी।
1: जब कोई नागरिक पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगान के समय खड़ा होता है, ध्वज फहराने के नियमों का पालन करता है और तिरंगे को सम्मान पूर्वक संभालता है, तब वो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है। अंजलि,
0: बिल्कुल,
1: तिरंगे का अपमान केवल ध्वज का अपमान नहीं है दोस्तों, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का अपमान है जो इसे अपने गौरव का प्रतीक मानते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज संहिता की जानकारी होनी चाहिए। तिरंगे को सदैव सम्मानजनक स्थान पर लगाया जाना चाहिए, इसे कभी भी जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। श्रोता साथियों, ध्वज के साथ किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार नहीं होना चाहिए। कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय पर्वों के बाद प्लास्टिक के तिरंगे को सड़कों या कचरे में पड़े देखना अत्यंत दुखद है। सच्चा राष्ट्र प्रेम केवल तिरंगा खरीदने में नहीं बल्कि उसका सम्मान पूर्वक उपयोग और संरक्षण करने में है।
1: बिल्कुल अंजलि, हर घर तिरंगा अभियान ने देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की नई भावना जगाई। जब प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराता है तब ये केवल एक उत्सव नहीं होता दोस्तों, बल्कि ये पूरे राष्ट्र की एकता और सह

0: सहभागिता का प्रतीक बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इस अभियान ने बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। श्रोताओं, भारत विश्व का सबसे युवा देश है, इसीलिए तिरंगे के सम्मान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी युवाओं पर है। अंजलि
1: जी, जी,
0: युवाओं को केवल राष्ट्रीय पर्वों पर नहीं बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी देशभक्ति को अपनाना होगा। ईमानदारी से कार्य करना, भ्रष्टाचार से दूर रहना, पर्यावरण की रक्षा करना, संविधान का सम्मान करना, समाज में सद्भाव बनाए रखना और अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये सारी चीजें तिरंगे के सम्मान के वास्तविक रूप है। आज हम देख रहे हैं अंजलि कि सोशल मीडिया के दौर में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि तिरंगे का उपयोग केवल दिखावे या प्रचार के लिए नहीं बल्कि सम्मान और प्रेरणा के लिए हो।
1: बिल्कुल जागृति जी, सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था का विषय नहीं है, यह नागरिकों की चरित्र, जिम्मेदारी और जागरूकता से जुड़ा हुआ विषय है। जब प्रत्येक नागरिक राष्ट्र हित को अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर रखता है, तभी सच्चा स्वराज स्थापित होता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि तिरंगा हमें यही संदेश देता है कि हम सत्य, त्याग, शांति, एकता और निरंतर कर्म के मार्ग पर चलें।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा राष्ट्र और अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। तिरंगे का सम्मान केवल जागृति जी ध्वजारोहण तक सीमित नहीं होना चाहिए। जब हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते हैं, स्वच्छता बनाए रखते हैं, करों का ईमानदारी से भुगतान करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं और संविधान का पालन करते हैं और समाज में प्रेम और सद्भाव फैलाते हैं, तब वास्तव में तिरंगे का सम्मान कर रहे होते हैं। राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का कार्य नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की इसमें महत्वपूर्ण कड़ी होती है।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा और इसी के साथ तिरंगा भारत की आत्मा है, ये हमारे इतिहास, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाला राष्ट्रीय प्रतीक है। इसकी प्रत्येक लहर हमें ये याद दिलाती है कि आजादी हमें बिना संघर्ष के नहीं मिली है बल्कि अनगिनत बलिदानों की कीमत भी प्राप्त हुई है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम तिरंगे का सम्मान केवल राष्ट्रीय पर्वों तक सीमित न रखें बल्कि अपने विचारों, व्यवहारों और कर्मों से प्रतिदिन उसका मान बढ़ाएं।
1: जी जी,
0: तो साथियों, हम आपको कहना चाहेंगे कि हम अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा करें, हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें, संविधान का सम्मान करें और आने वाली पीढ़ियों में भी राष्ट्र प्रेम की भावना को विकसित करें।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि जब तिरंगा सम्मानित होता है तब राष्ट्र का गौरव बढ़ता है और जब राष्ट्र का गौरव बढ़ता है तभी सच्चे स्वराज का सपना साकार होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोताओं, पूरे मन से कहे कि तिरंगे का सम्मान ही राष्ट्र का अभिमान है और राष्ट्र का अभिमान ही सच्चे स्वराज की पहचान है।
1: जी हाँ जागृति जी, जब जब तिरंगा आकाश में लहराता है तब तब वह हमें याद दिलाता है कि यह आजादी हमें विरासत में नहीं बल्कि अनगिनत बलिदानों की कीमत पर मिली है।
0: बिल्कुल,
1: हम केवल राष्ट्रीय पर्वों पर ही नहीं बल्कि अपने हर अच्छे कर्म से तिरंगे का मान बढ़ाएं, क्योंकि तिरंगे का सम्मान ही राष्ट्र का अभिमान है और राष्ट्र का अभिमान ही सच्चे स्वराज की पहचान है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, उम्मीद करते हैं कि बातें जरूर पसंद आई होंगी और अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
5: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
6: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जई वरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
4: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
0: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
4: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें। महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

साथियों, हर हुनर रोजगार नहीं बनता, लेकिन हर हुनर जीवन को बेहतर जरूर बनाता है। जी हाँ श्रोता साथियों, कुछ शौक कमाई के लिए नहीं बल्कि मन की मुस्कान के लिए होते हैं। जिस दिन हर खुशी को कमाई से जोड़ दिया जाएगा, उस दिन शौक नहीं केवल काम बचेंगे, और जिस जीवन में केवल काम रह जाएगा वहाँ मन धीरे धीरे थकने लगता है।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ एक बार फिर से कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी करियर, हमारी सफलता, हमारी खुशी, संतोष, अनुशासन, कई सारी चीजों को लेकर ढेर सारी बातें करते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि क्या हर शौक का करियर बनाना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में अक्सर यह सलाह सुनने को मिलती है कि अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लो। यह विचार कई लोगों के लिए प्रेरणादायक है, लेकिन क्या यह हर व्यक्ति पर लागू होता है? क्या हर शौक को रोजगार में बदल देना ही सही रास्ता है, या कुछ शौक ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम केवल अपने मन की खुशी के लिए जिए? आज कार्यक्रम में सबसे पहले हम जानते हैं शौक यानी कि हमारी रुचि क्या होती है। तो श्रोता साथियों, शौक वह है जिसे हम बिना किसी दबाव के अपनी खुशी के लिए करते हैं। किसी को गीत गाना अच्छा लगता है, किसी को चित्र बनाना तो किसी को बागवानी करना, किसी को किताबें पढ़ना तो किसी को खाना बनाना, किसी को लोक गीत या लोक नृत्य सीखना पसंद है। इन कामों में हमें आनंद मिलता है क्योंकि इन्हें करने के पीछे कोई मजबूरी नहीं होती। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि इन्हीं सारी चीजों पर कमाई का दबाव पड़ रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया के कारण आज हर शौक को करियर बनाने की बातें बहुत होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई अच्छा खाना बनाता है तो लोग कहते हैं कि YouTube पर चैनल बना लो। अगर कोई अच्छा गाता है तो उसे बोल देते हैं कि एल्बम निकालो। अगर कोई अच्छा फोटो खींचता है तो उसे कह देते हैं कि फोटोग्राफी बिजनेस शुरू कर दो। अगर कोई अच्छा लिखता है उसे कहते हैं कि पैसा बना लो। लेकिन क्या हर शौक का उद्देश्य केवल पैसा कमाना ही होता है? जी हाँ दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर कला का मूल्य पैसों से नहीं आंका जा सकता। कुछ हुनर दिल को सुकून देने के लिए होते हैं। जब शौक पर केवल कमाई का बोझ आ जाता है तो कई बार आनंद पीछे छूट जाते हैं। तो श्रोता साथियों, अब यही बात आती है कि जब शौक जिम्मेदारी बन जाए तब क्या करें? तो कल्पना कीजिए दोस्तों कि आपको चित्र बनाना बहुत पसंद है। आप रोज मन से चित्र बनाते हैं, लेकिन यदि वही काम रोज समय पर पूरा करना पड़े, ग्राहकों की पसंद के अनुसार बनाना पड़े, कमाई की चिंता से जुड़ जाए, तो संभव है कि वही आपकी जो रुचि है वो धीरे धीरे तनाव का कारण बनने लगती है। हर व्यक्ति इस बदलाव को सहजता से नहीं अपना पाता है और बहुत सी बार जिस काम को एक समय उन्हें बहुत करना पसंद होता है वही काम धीरे धीरे उनके लिए बोझ बनने लग जाता है। इसलिए श्रोता साथियों, अपनी रुचि के असली उद्देश्य को समझिए। जी हाँ, हर रुचि हमें गहरा उद्देश्य देती है। इससे हमारा मन हल्का होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, तनाव कम होता है, खुद को अभिव्यक्त करने का मौका मिल पाता है और जीवन में जो है संतुलन बना रहता है। यदि हमारी रुचि यह सब कर रही है तो वो हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, चाहे उससे एक रुपया भी हमें क्यों न कमाने को मिले। श्रोता साथियों, देखते हैं कि आज कई माता पिता बच्चों के हर शौक को प्रतियोगिता बना देते हैं। बच्चों को नृत्य पसंद है तो तुरंत प्रतियोगिता, गाना पसंद है तो तुरंत मंच, चित्रकला पसंद है तो तुरंत पुरस्कार की तैयारी। धीरे धीरे बच्चा आनंद के लिए नहीं परिणाम के लिए काम करने लगता है और कई बार उसकी रुचि से वह दूर हो जाता है। इसलिए श्रोता साथियों, हर प्रतिभा को मंच चाहिए होता है, लेकिन हर मंच प्रतियोगिता नहीं होता। यदि आपकी रुचि इतनी मजबूत है कि आप उसे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह निर्णय केवल उत्साह से नहीं, तैयारी, मेहनत और वास्तविक परिस्थितियों को समझ कर लेना चाहिए। और यदि आपने अपनी रुचि को केवल अपनी खुशी के लिए ही बचा कर रखा है तो इसमें कोई भी कमी नहीं है। दोनों ही रास्ते सम्मान के योग्य हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से हर शौक हमेशा करियर नहीं होता, ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से हमें हमारे जीवन में हमारी शौक यानी कि हमारी रुचि को समझने की जरूरत है और किस तरीके से हमेशा वह एक करियर का रास्ता नहीं हो सकती है। श्रोता साथियों, कुछ लोग सुबह पौधे की देखभाल करते हैं, कुछ लोग कविता लिखते हैं, कुछ लोग बांसुरी बजाते हैं, तो कुछ लोग गांव के बच्चों को निशुल्क पढ़ाते हैं। इसमें से हर काम से पैसा नहीं मिलता, लेकिन इनसे मिलने वाला जो संतोष है वो कई बार धन से भी बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, हर काम का लाभ बैंक खाते में नहीं दिखता, कुछ लाभ मन की शांति में दिखाई देते हैं। जिस शौक को आप बचा कर रख रहे हैं वही कई बार आपको जीवन की थकान से बचा लेता है। इसलिए दोस्तों, यदि शौक और करियर एक हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ऐसा न हो तो भी जीवन अधूरा नहीं होता। जरूरी यह है कि आप अपने शौक को पूरी तरह न छोड़ दें, हर सप्ताह थोड़ा समय उस काम के लिए निकालो जो आपको भीतर से खुशी देता है। जी हाँ दोस्तों, जब लोग केवल कमाई नहीं बल्कि अपनी रुचियों को भी महत्व देते हैं ना, तो समाज अधिक रचनात्मक बनता है। कहते हैं ना कि लोक कला बचती है, संगीत जीवित रहता है, पुस्तकें लिखी जाती हैं, चित्र बनते हैं, बच्चों को प्रेरणा मिलती है। यानी कि रुचि केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज को भी समृद्ध बनाती है। जी हाँ श्रोता साथियों, हर शौक को करियर बनाना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि हर इंसान के जीवन में ऐसा एक काम जरूर हो जिसे वह बिना किसी दबाव, बिना किसी तुलना, बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के केवल अपनी खुशी के लिए कर सके। कमाई जीवन की आवश्यकता है, लेकिन मन की शांति भी उतनी ही जरूरी है। यदि दोस्तों हम हर रुचि को केवल आय का साधन बना देंगे तो शायद धीरे धीरे जीवन से सहज आनंद कम होता जाएगा। इसलिए अपनी रुचि का सम्मान कीजिए, यदि वह करियर बन सके और आप तैयार हो तो आगे बढ़िए, यदि नहीं तो उसे जीवित रखिए, क्योंकि वही रुचि कठिन समय में आपके चेहरे पर मुस्कान लुटाने का कारण बन सकती है। कहते हैं ना कि हर सपना नौकरी नहीं बनता, हर रुचि व्यवसाय नहीं बनती, बल्कि हर सच्चा शौक इंसान को बेहतर जरूर बनाता है। कमाने के लिए काम कीजिए, लेकिन जीने के लिए अपनी रुचि को बचा कर रखिए, क्योंकि जीवन केवल रोटी कमाने का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि मन को जीवित रखने का नाम भी है। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों आपको कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे लिए यह भी समझना आवश्यक है कि जीवन का हर निर्णय केवल आर्थिक लाभ के आधार पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका मूल्य रुपये पैसे से नहीं बल्कि हमारे मन की शांति, आत्मसंतोष और जीवन की गुणवत्ता से तय होता है। कहते हैं ना कि शौक भी उन्हीं अनमोल चीजों में से एक है। यदि हम हर रुचि को केवल करियर और कमाई की दृष्टि से देखने लगे तो धीरे धीरे जीवन का वह सहज आनंद खो सकता है जो हमें भीतर से जीवंत बनाए रखता है। आज की दुनिया में सफलता की परिभाषा अक्सर आय, पद और प्रसिद्धि से जोड़ी जाती है, लेकिन यह भी सच है दोस्तों कि बहुत से लोग आर्थिक रूप से सफल होने के बाद भी अपने लिए कुछ समय निकालने की तलाश में रहते हैं। जी हाँ, इसका कारण यही है कि इंसान केवल काम करने के लिए नहीं बना बल्कि महसूस करने, सीखने, सृजन करने और अपने मन को अभिव्यक्त करने के लिए भी बना है। यदि जीवन में केवल जिम्मेदारियां हो और मन को खुशी देने वाली गतिविधियां न हो तो धीरे धीरे जीवन एक मशीन की तरह लगने लगता है। जी हाँ, हम अपने बच्चों को भी यह सिखाएं श्रोता साथियों कि हर रुचि का उद्देश्य प्रतियोगिता जीतना या पैसा कमाना नहीं होता। कोई बच्चा यदि संगीत सीखता है, चित्र बनाता है, पौधे लगाता है, लोकगीत गाता है या कहानियाँ लिखता है तो पहले उसे उस काम से प्रेम करना सीखने दीजिए। यदि भविष्य में वह उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहे और मेहनत के साथ आगे बढ़े तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि वह उस शौक को केवल अपने मन की खुशी के लिए जीवित रखना चाहता है तो यह भी उतना ही सम्मानजनक निर्णय है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समाज को भी अपनी सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमें हर प्रतिभा से यह प्रश्न पूछना बंद करना होगा कि इससे कमाई कितनी होती है, और यह प्रश्न पूछना शुरू करना होगा श्रोता साथियों कि इससे तुम्हें खुशी कितनी मिलती है, क्योंकि जो काम किसी व्यक्ति को भीतर से संतुष्टि देता है वही उसके व्यक्तित्व को संतुलित, रचनात्मक और संवेदनशील बनाता है। इसलिए दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगी कि हर हुनर बाजार के लिए नहीं होता, कुछ हुनर जीवन को सुंदर बनाने के लिए होते हैं।
अपने शोक को बचा कर रखिए, क्योंकि वही कठिन दिनों में आपके चेहरे पर मुस्कान, थके हुए मन में नई ऊर्जा और जीवन में नया उत्साह भर सकते हैं। कमाई जीवन चलाती है, लेकिन रुचियां जीवन को महकाती है। इसलिए ऐसा संतुलन बनाइए जहां काम आपकी जिम्मेदारियों को निभाए और आपकी रुचि आपकी आत्मा को जीवित रखे। यही संतुलन एक सफल नहीं बल्कि एक सार्थक और खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। तो श्रोता साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब समय हो चला है हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है राष्ट्रीय ध्वज दिवस और चंद्रयान 2 दिवस को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: आज हम कार्यक्रम में विस्तार से ये

0: जानेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस क्यों मनाया जाता है, तिरंगा हमारे गौरव की शान और उसकी पहचान क्या है और किस तरीके से हमें इसका महत्व समझने की जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में जाने तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि जब सुबह की पहली किरण के साथ किसी विद्यालय, सरकारी भवन, ग्राम पंचायत या किसी ऊंची पहाड़ी पर तिरंगा लहराता है तो वह केवल हवा से उड़ता हुआ कपड़ा नहीं होता, वह हमारे देश की आत्मा, स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों की गाथा, करोड़ों भारतीयों के सपनों और हमारे संविधान के आदर्शों का प्रतीक होता है।
1: बिल्कुल।
0: तिरंगा हमें याद दिलाता है कि अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं हम, अलग अलग परंपराओं को मान सकते हैं, लेकिन हमारी पहचान एक है कि हम भारतीय हैं। तो आज कार्यक्रम में विस्तार से इन दोनों ही विषयों पर हमारी बातचीत रहेगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
1: जी बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में है।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय ध्वज दिवस को लेकर और चंद्रयान टूर को लेकर। अंजलि जी, हम देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केवल 3 रंगों का कपड़ा नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि यह देश की आजादी, सम्मान, एकता और स्वाभिमान का प्रतीक है। जब तिरंगा हवा में लहराता है श्रोता साथियों, तो हर भारतीय के मन में गर्व, देशभक्ति और सम्मान की भावना जाग उठती है। हमारे देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने इस तिरंगे के सम्मान और देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए श्रोता साथियों, राष्ट्रीय ध्वज हमारे लिए केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि हमारी पहचान और हमारे संविधान के आदर्शों का प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस हमें ये याद दिलाता है श्रोता साथियों कि हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और उसके आदर्शों के अनुसार अपने जीवन में सत्य, शांति, एकता और राष्ट्रीय सेवा की भावनाओं को अपनाना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस हमारे राष्ट्र ध्वज के सम्मान, उसकी गरिमा और उसके महत्व को समझने का अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि तिरंगा केवल राष्ट्रीय प्रतीक नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, एकता और अखंडता का जीवंत प्रतीक है। जब हम तिरंगे को सलामी देते हैं तो हम केवल ध्वज को नहीं बल्कि उन असंख्य वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने इस ध्वज की शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज एक लंबे संघर्ष और कई प्रयासों का परिणाम है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक प्रकार के ध्वज बनाए गए, समय के साथ उनमें बदलाव होते रहे और स्वतंत्र भारत के लिए जिस ध्वज को अपनाया गया वह पूरे राष्ट्र की आकांक्षाओं का प्रतीक बना। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद 15 अगस्त 1947 को यही तिरंगा पहली बार स्वतंत्र भारत के आकाश में लहराया। यह क्षण केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का नहीं था श्रोता साथियों, बल्कि करोड़ों भारतीयों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की विजय का प्रतीक था।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ यहीं अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज की संरचना की, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार आकार का होता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है।
1: बिल्कुल,
0: इसमें श्रोता साथियों 3 समान क्षैतिज पट्टियां भी हैं। अंजलि जी, हम देखते हैं कि ऊपर का रंग केसरिया, बीच में सफेद और हरा रंग होता है।
1: बिल्कुल,
0: सफेद पट्टी के बीच श्रोता साथियों घेरे रंग का एक अशोक चक्र बना होता है जिसमें हम देखते हैं कि 24 तिलियां होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: यह ध्वज श्रोता साथियों दिखने में जितना सुंदर ही, इसके पीछे छुपा संदेश भी श्रोता साथियों उतना ही महान और प्रेरणादायक है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे तिरंगे के 3 रंग का क्या महत्व है। तो श्रोता साथियों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं और हर रंग अपने भीतर एक गहरा संदेश समेटे हुए है। केसरिया रंग जो है, जो कि सबसे ऊपर रहता है, त्याग, साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। यह हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी कार्य करें। जब कोई सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करता है, जब कोई किसान कठिन परिस्थितियों में अन्न उगाता है, जब कोई शिक्षक दूर दराज गाँव में बच्चों को शिक्षा देता है, ये सभी उसी त्याग और सेवा की भावनाओं को जीवित रखते हैं। अगर सफेद रंग की बात करें तो बीच का सफेद रंग शांति, सत्य और पारदर्शिता का प्रतीक है। यह हमें संदेश देता है मनीषा कि समाज का विकास केवल शक्ति से नहीं बल्कि सत्य, ईमानदारी और आपसी विश्वास से होता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि गांव में लोग मिलजुल कर समस्याओं का समाधान करें, यदि परिवारों में संवाद बना रहे, यदि समाज में न्याय और समानता हो, तभी सच्ची शांति स्थापित हो सकती है। सर, अगर बात करें अब हरे रंग की, जो कि सबसे नीचे आता है, यह प्रकृति, समृद्धि, कृषि और विकास का प्रतीक है। श्रोता साथियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यह रंग में धरती और जल, जंगल और पर्यावरण के संरक्षण की प्रेरणा हमें देता है। जब किसान खेतों में मेहनत करते हैं, जब गांव के लोग पेड़ लगाते हैं, जल संरक्षण करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हैं, तब वे तिरंगे के इस संदेश को व्यवहार में उतारते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर श्रोता साथियों को बताएं कि अशोक चक्र का क्या महत्व है, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सफेद पट्टी के बीच स्थित अशोक चक्र सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है।
1: बिल्कुल,
0: इसमें श्रोता साथियों 24 तिलियां हैं जो कि 24 घंटे निरंतर श्रोता साथियों कर्म करने की प्रेरणा देती हैं।
1: बिल्कुल,
0: यह न्याय, यह न्याय श्रोता साथियों प्रगति अनुशासन और गतिशील जीवन का प्रतीक है। इसका संदेश है श्रोता साथियों कि जीवन में हमें कभी रुकना नहीं है बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहना है।
1: बिल्कुल मनीषा आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है। ये बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम राष्ट्रीय ध्वज दिवस को लेकर ढेर सारी बातें कर रहे हैं, जिसमें हमने गीत से पहले जाना मनीषा कि तिरंगे की तिरंग हमें क्या कहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अब बात आती है अशोक चक्र के महत्व की। तो श्रोता साथियों, सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं। यह चक्र निरंतर आगे बढ़ने, कर्म करने और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। उसका संदेश स्पष्ट है, जीवन में रुकना नहीं है। समाज हो, देश हो या व्यक्ति, यदि वह आगे बढ़ना छोड़ देता है तो विकास भी रुक जाता है।
1: बिल्कुल,
0: अशोक चक्र हमें सिखाता है कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी ही राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति होती है।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, तिरंगा केवल सरकारी भवनों तक सीमित नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि तिरंगा केवल सरकारी कार्यालयों या राष्ट्रीय पर्वों के लिए है, लेकिन वास्तव में तिरंगा हर भारतीय के हृदय में बसता है। जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जब वैज्ञानिक नई उपलब्धि हासिल करते हैं, जब सैनिक सीमा पर विजय प्राप्त करते हैं, या जब कोई नागरिक अपने कार्य से देश का नाम रोशन करता है, हर सफलता के साथ तिरंगे का सम्मान भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे गाँव भारत की आत्मा है और गाँव में राष्ट्रीय ध्वज केवल विद्यालय की छत पर नहीं बल्कि मनीषा लोगों की सोच में भी दिखाई देना चाहिए। जब ग्राम सभा में ईमानदारी से निर्णय लिए जाते हैं, जब सभी जाति वर्ग और समुदाय के लोग मिलकर गांव का विकास करते हैं, जब बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और महिलाएं नेतृत्व में आगे आती है, तब तिरंगे का वास्तविक सम्मान होता है।
1: जी हाँ,
0: राष्ट्रीय ध्वज हमें केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी याद दिलाता है। श्रोता साथियों, आज के युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि युवा ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत और देशभक्ति के मूल्यों को अपनाएंगे मनीषा, तो भारत का भविष्य और अधिक उज्जवल होगा। तिरंगे को सम्मान देना केवल झंडा फहराने तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक सम्मान तब होगा जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, कानून का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, समाज में सद्भाव बनाए रखें और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तिरंगे का विशेष स्थान रहा है। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे हाथ में लेकर अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध आंदोलन किए थे। जब कोई भी सत्याग्रह या रैली होती है श्रोता साथियों, तब तिरंगा लोगों के मन में साहस और आत्मविश्वास का स्रोत लाता है।
0: बिल्कुल,
1: अनेक वीरों ने श्रोता साथियों तिरंगे की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसलिए तिरंगा केवल कपड़ा नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि लाखों बलिदानों की अमर गाथा है। यहीं अगर अंजलि जी बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज का हमें सम्मान क्यों करना चाहिए, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हर भारतीय का कर्तव्य ही कि वह राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे। तिरंगे का अपमान करना केवल कानून का उल्लंघन करना नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि देश के सम्मान को भी ठेस पहुंचाना है।
0: जी हाँ।
1: ध्वज फहराते समय उसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए श्रोता साथियों, साथ ही फटा या गंदे ध्वज का हमें उपयोग नहीं करना है और इसका उपयोग हमें सजावटी या किसी अनुचित कार्य में भी नहीं करना है।
0: बिल्कुल मनीषा, भारत की आजादी का संघर्ष केवल हथियारों का संघर्ष नहीं था बल्कि ये आत्मसम्मान, स्वाभिमान और पहचान की लड़ाई भी थी। उस समय तिरंगा लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गया था। जब भी कोई स्वतंत्रता सेनानी हाथ में ध्वज लेकर आगे बढ़ता तो उनके साथ हजारों लोग जुड़ जाते थे। कई बार अंग्रेजी शासन ने ध्वज फहराने से रोका, लेकिन लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। अनेक देशभक्तों ने तिरंगे की शान बनाए रखने के लिए जेल की यातनाएं सही, लाठियां खाई, अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। इसलिए जब आज हम तिरंगे को देखते हैं तो हमें उन अनगिनत बलिदानों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से यह ध्वज आज स्वतंत्र भारत के आकाश में गर्व से लहराता है।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से कि किसी भी राष्ट्र का ध्वज उसकी पहचान होता है। जिस प्रकार हम अपने माता पिता, गुरु, अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
1: बिल्कुल,
0: तिरंगे का सम्मान करना केवल औपचारिकता नहीं, इसका अर्थ है देश के संविधान का सम्मान करना, सभी नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। यदि हम केवल ध्वज को सलामी दें लेकिन अपने व्यवहार में ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी न रखें, तो यह सम्मान अधूरा रह जाता है।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि राष्ट्र ध्वज हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि कर्तव्यों की भी याद दिलाता है।
1: बिल्कुल।
0: हर नागरिक का दायित्व है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, देश की एकता और भाईचारे को बनाए रखें, जाति धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव न करें, पर्यावरण की रक्षा करें, कानून का पालन करें और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। यही सच्ची देशभक्ति है और यही तिरंगे का वास्तविक सम्मान भी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए ध्वज संहिता भी बनाई है। इनके अनुसार श्रोता साथियों, ध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। ध्वज को जमीन या किसी पानी की जगह पर हमें नहीं रखना चाहिए। साथ ही श्रोता साथियों, सतीग्रस्त ध्वज का हमें उपयोग नहीं करना है। ध्वज को निर्धारित नियमों के अनुसार ही हमें सुरक्षित लगाना है और सुरक्षित उतारना है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि प्रत्येक नागरिक को तिरंगे का सम्मान करना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, हम देखते हैं कि युवा है वो हमारे देश के भविष्य हैं। इसीलिए युवाओं को केवल तिरंगा फहराना ही नहीं बल्कि उनके आदर्शों को भी अपनाना चाहिए। ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत, राष्ट्रीय प्रेम, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भावना और संविधान का सम्मान भी श्रोता साथियों करना चाहिए। यदि तिरंगे का श्रोता साथियों वास्तविक संदेश यही है कि हम तिरंगे का सम्मान करें, अपने देश का सम्मान करें और देश के लोगों का सम्मान करें।
0: जी हाँ मनीषा, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश में माना जाता है। युवा यदि सही दिशा में आगे बढ़े तो देश नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तिरंगा युवाओं को 5 महत्वपूर्ण संदेश देता है, जैसे कि पहला, साहस रखो, कठिनाई से मत डरो। दूसरा, सत्य का साथ दो, ईमानदारी से जीवन जियो। तीसरा है, प्रकृति से प्रेम करो, पर्यावरण बचाओ। चौथा है, लगातार सीखते रहो, अशोक चक्र की तरह आगे बढ़ते रहो। पांचवा है, देश हित को सर्वोपरि रखो, यानी कि जहां भी काम करो ऐसा करो कि देश का नाम ऊंचा हो। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि अक्सर हम केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही तिरंगे के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या देश केवल 2 दिन की ही भावना में होना चाहिए? नहीं, देशभक्ति जो है वो हर दिन में दिखाई देनी चाहिए। जब किसान मेहनत से खेती करता है, जब शिक्षक पूरी लगन से पढ़ाते हैं, जब डॉक्टर ईमानदारी से मरीज की सेवा करता है, जब सहकर्मी पूरे समर्पण से अपना काम करता है, जब विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, जब नागरिक नियमों का पालन करते हैं, इन सभी कार्यों में तिरंगे का सम्मान छिपा है।
1: बिल्कुल
0: कह सकते हैं श्रोता साथियों कि तिरंगे का सम्मान केवल झंडा फहराने से पूरा नहीं होता। उसका सम्मान तब होता है जब हम अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन, सेवा, एकता और जिम्मेदारी को अपनाते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि भारत अनेक भाषाओं, धर्मों और संस्कृति और परंपराओं का देश है। इन सभी विविधताओं के बीच श्रोता साथियों, तिरंगा पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। जब कोई भी प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या वैज्ञानिक उपलब्धि का अवसर होता है श्रोता साथियों, तब तिरंगा फहराया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तब प्रत्येक भारतीय स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वतंत्रता, एकता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय गौरव का भी अमूल्य प्रतीक है। इसके 3 रंग और अशोक चक्र श्रोता साथियों हमें साहस, शांति, समृद्धि और निरंतर कर्म करने का संदेश देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हमारा कर्तव्य है कि हम केवल राष्ट्रीय पर्वों तक ही सीमित नहीं रहें, बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी तिरंगे के आदर्शों का पालन करें। अंजलि जी, जब प्रत्येक नागरिक ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र प्रेम को अपनाएगा, तभी भारत और अधिक विकसित और समृद्ध और सम्मानित बन पाएगा।
0: जी हाँ मनीषा, तो जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे हम जानेंगे अब चंद्रयान 2 के बारे में कि वो क्या था और उसका क्या महत्व है, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले हम बातें कर रहे थे राष्ट्रीय ध्वज दिवस को लेकर, यही अगर श्रोता साथियों बात करें चंद्रयान 2 को लेकर, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि भारत ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। श्रोता साथियों आज हम देखते हैं कि भारत केवल कृषि, शिक्षा, चिकित्सा और सूचना प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी मेहनत, लगन और वैज्ञानिक सोच के बल पर अनेक सफल अंतरिक्ष मिशन पूरे किए हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण मिशनों में से श्रोता साथियों चंद्रयान 2 का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र मिशन था। यह मिशन केवल चंद्रमा तक पहुंचाने का प्रयास नहीं था श्रोता साथियों, बल्कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने की दिशा में भारत का सबसे बड़ा कदम था।
1: बिल्कुल,
0: इस मिशन ने श्रोता साथियों यह साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस लक्ष्य को हासिल अपने सांस के साथ हासिल कर सकते हैं। यदि भी श्रोता साथियों इस मिशन में लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी, फिर भी श्रोता साथियों ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए जानकारी भेज रहा है। इसलिए चंद्रमा 2 को असफल नहीं कहा जा सकता श्रोता साथियों, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि जब कोई बच्चा रात के आकाश में चमकते चांद को देखकर पूछता है कि क्या कोई वहां गया है, तो विज्ञान उसे जिज्ञासा को खोज में बदल देता है। चंद्रयान 2 ऐसे ही जिज्ञासा, मेहनत और वैज्ञानिक सोच का परिणाम था। केवल एक अंतरिक्ष मिशन नहीं था श्रोता साथियों, बल्कि भारत के सपनों, वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता की उड़ान थी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि चंद्रयान 2 क्या था, इसका क्या उद्देश्य है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। श्रोता साथियों चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र मिशन था, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने तैयार किया था। श्रोता साथियों इसका उद्देश्य चंद्रमा का गहराई से अध्ययन करना और विशेष रूप से उसके दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के बारे में वैज्ञानिक जानकारी जुटाना था। इस मिशन में मनीषा 3 प्रमुख भाग शामिल किए गए थे। ऑर्बिटर की बात करें जो चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन करता है। लैंडर विक्रम की बात करें जिसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह पर उतरना था। रोवर प्रज्ञान की बात करें जिसे सतह पर चलकर प्रयोग करने थे। श्रोता साथियों इस मिशन ने दिखाया कि भारत केवल अंतरिक्ष में पहुंचने का सपना नहीं देखता, बल्कि कठिन वैज्ञानिक चुनौतियों का सामना भी करता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सदियों से चंद्रमा मनुष्य की जिज्ञासा का केंद्र रहा है, लेकिन विज्ञान के लिए यह केवल सुंदर दृश्य नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है।
0: बिल्कुल,
1: वैज्ञानिक चंद्रमा का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि वहां के भूगर्भीय इतिहास को जा सके, जल या बर्फ की संभावनाओं का पता लगाया जा सके, भविष्य में मानव मिशनों की पूरी तैयारी की जा सके। इसी के साथ श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि सौर मंडल के निर्माण के बारे में नई जानकारी मिल सकती है। चंद्रयान 2 का विशेष ध्यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर था क्योंकि इस क्षेत्र का अध्ययन पहले बहुत कम हुआ था। अगर यही बात करें कि इस मिशन की शुरुआत कैसे हुई मनीषा, तो जब चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया तो पूरे देश की निगाहें इस मिशन पर थी। वैज्ञानिकों ने वर्षों की मेहनत, परीक्षण और शोध के बाद इसे तैयार किया था। यह केवल वैज्ञानिकों का ही नहीं बल्कि उन हजारों इंजीनियरों और तकनीकों और शोधकर्ताओं और कर्मचारियों का सपना था जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस मिशन को तैयार किया था।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि पूरे देश ने गर्व के साथ इस यात्रा को देखा और हर भारतीय ने महसूस किया कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि चंद्रयान 2 की सफलता के पीछे इसरो के हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों ने वर्षों से मेहनत की थी। उन्होंने दिन रात काम करके इस मिशन को श्रोता साथियों तैयार किया था।
1: बिल्कुल,
0: जब लैंडर से संपर्क टूटा श्रोता साथियों तब भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं माने। उन्होंने पूरे धैर्य के साथ मिशन का प्रक्षेपण किया और भविष्य की योजनाओं पर काम शुरू किया। उनकी मेहनत ने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि असफलता सीखने का अवसर है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि चंद्रयान 2 केवल वैज्ञानिक मिशन नहीं था बल्कि पूरे भारत का सपना था। जब इसका प्रक्षेपण हुआ अंजलि जी, तो हर भारतीय के मन में गर्व था।
1: बिल्कुल।
0: लैंडर के समय श्रोता साथियों जब संपर्क टूटा तब लोगों को दुख हुआ, लेकिन सभी ने वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाया। उस समय देश के प्रधानमंत्री भी इसरो पहुंचे और वैज्ञानिकों को हौसला दिया।
1: बिल्कुल मनीषा, जब हम किसी बड़ी उपलब्धि की बात करते हैं तो अक्सर अंतिम परिणाम ही दिखाई देता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन उसके पीछे वर्षों की मेहनत, असफल प्रयोग, धैर्य और लगातार सीखने की प्रक्रिया होती है। चंद्रयान 2 भी इसी का उदाहरण है। श्रोता साथियों, भारतीय वैज्ञानिकों ने सीमित संसाधनों में विश्व स्तरीय तकनीक विकसित की।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने ये साबित किया कि यदि संकल्प मजबूत हो तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का चंद्रमा पर उतरने का अंतिम चरण पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि मिशन असफल हो गया। ऑर्बिटर ने अपना काम जारी रखा और लंबे समय तक चंद्रमा से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी भेजता रहा। इस मिशन ने हमें यह सिखाया है श्रोता साथियों कि विज्ञान में हर प्रयास सीखने का अवसर होता है। असफलता अंत नहीं, अगली सफलता की तैयारी होती है। धैर्य और निरंतर प्रयास ही वैज्ञानिक प्रगति का आधार है। यही सीख आगे चलकर भारत के अगले चंद्र मिशनों के लिए महत्वपूर्ण बनी रहेगी। कई लोग सोचते हैं मनीषा कि अंतरिक्ष विज्ञानों का गांवों से क्या संबंध है।
0: जी हाँ।
1: वास्तव में गांव अंतरिक्ष तकनीक का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाते हैं। आज मौसम की सटीक जानकारी, खेती के लिए उपग्रह चित्र, प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी, संचार व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में अंतरिक्ष तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान। इसलिए जब भारत अंतरिक्ष में आगे बढ़ता है तो उसका लाभ केवल वैज्ञानिकों नहीं बल्कि किसान, विद्यार्थी, शिक्षक और आम नागरिक तक भी पहुंचता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से चंद्रयान 2 को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे हमारे श्रोता साथियों से। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज हम चंद्रयान 2 के बारे में ढेर सारी जानकारी को प्राप्त कर पा रहे थे कि किस तरीके से इस मिशन का लक्ष्य रहा था, यही बात आती है श्रोता साथियों कि चंद्रयान 2 ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत कठिन वैज्ञानिक चुनौतियों को स्वीकार करने वाला देश है। भारत ने यह भी दिखाया कि सीमित संसाधनों में भी विश्व स्तरीय अंतरिक्ष मिशन तैयार किए जा सकते हैं। इस मिशन ने भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता पर दुनिया का विश्वास और मजबूत किया। आज भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी देशों में गिना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और अनेक देश भारतीय अंतरिक्ष तकनीक में रुचि दिखा रहे हैं। कहना चाहेंगे मनीषा कि इस मिशन की सबसे बड़ी सीख थी, हार मानना विकल्प नहीं है। जब लैंडर से संपर्क टूट गया तब पूरे देश की निगाहें इसरो के वैज्ञानिकों पर थी। उस समय उन्होंने निराश होकर काम छोड़ने के बजाय और अधिक मेहनत की। उन्होंने हर तकनीक पहलू का अध्ययन किया, गलतियों का विश्लेषण किया और अगले मिशन की तैयारी शुरू कर दी।
1: बिल्कुल।
0: यह दृढ़ संकल्प आगे चलकर भारत की ऐतिहासिक सफलता का आधार बना।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि चंद्रयान 2 हमें यह सिखाता है श्रोता साथियों कि सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उसे सीखकर हमें आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता है।
0: बिल्कुल।
1: इस मिशन में वैज्ञानिकों ने नई तकनीकी को समझा और अपनी कमियों को दूर किया। यही अनुभव श्रोता साथियों आगे चलकर चंद्रयान 3 की सफलता का आधार बना। यह मिशन युवाओं के लिए प्रेरणा है कि वे मेहनत, धैर्य और अनुशासन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल। इसी के साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आज का युवा यदि चंद्रयान 2 की कहानी को समझे तो उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश मिलेगा।
1: जी हाँ।
0: यदि किसी परीक्षा में सफल न हो पाए तो यदि नौकरी न मिले तो कोई सपना अधूरा रह जाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यात्रा समाप्त हो गई है, बल्कि यह संकेत है कि और अधिक धैर्य और अनुभव के साथ आगे बढ़ना है। चंद्रयान 2 हमें सिखाता है मनीषा कि अस्थाई रुकावटें स्थाई हार नहीं होती। आज आवश्यकता है कि गांव के बच्चे भी विज्ञान से जुड़े, उन्हें केवल किताबों तक सीमित न रखा जाए बल्कि प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है।
1: जी हाँ।
0: यदि किसी बच्चे को रात का आकाश अच्छा लगता है, यदि वह तारे और ग्रहों के बारे में जानना चाहता है तो उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए। हो सकता है कि वही बच्चा आगे चलकर भारत का अगला वैज्ञानिक बने। इस मिशन ने यह भी साबित किया है श्रोता साथियों कि भारत अपनी तकनीक स्वयं विकसित करने की क्षमता रखता है। जब कोई देश अपनी वैज्ञानिक तकनीक विकसित करता है तो वह केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि ज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में भी मजबूत बनता है।
1: बिल्कुल।
0: आत्मनिर्भर भारत का सपना केवल उद्योगों से नहीं श्रोता साथियों बल्कि विज्ञान, अनुसंधान और नई खोजों से पूरा होता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से मनीषा कि चंद्रयान 2 से मिले अनुभव के आधार पर वैज्ञानिकों ने अपनी तकनीक में कई सुधार किए, लैंडिंग प्रणाली को और बेहतर बनाया, परीक्षणों को अधिक मजबूत बनाया और हर छोटी बड़ी चुनौती का समाधान खोजा।
1: बिल्कुल।
0: यही कारण था कि आगे चलकर भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके विश्व इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि चंद्रयान 2 ने भारत की अंतरिक्ष तकनीकी को और अधिक मजबूत बनाया है। इस मिशन ने दुनिया के सामने वैज्ञानिकों की जो क्षमता है उसको सिद्ध किया है।
0: बिल्कुल।
1: इसके कारण श्रोता साथियों भारत की पहचान एक अनंत अंतरिक्ष के रूप में सिद्ध और मजबूत हुई है। कई देशों ने भारत तकनीकी की क्षमताओं की सराहना की श्रोता साथियों। इस मिशन ने भविष्य के अनेक अंतरिक्ष अभियानों के मार्ग को प्रशक्त किया है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि चंद्रयान 2 ने देश के लाखों विद्यार्थियों और युवाओं की विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाई है। अनेक छात्र वैज्ञानिक बनने का सपना देखने लगे हैं। यह मिशन श्रोता साथियों में बताता है कि यदि मन में बड़ा लक्ष्य हो, मेहनत, ईमानदारी हो तो हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज भारत के युवा अंतरिक्ष विज्ञान, रोबोटिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और साथ ही अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि चंद्रयान जैसी उपलब्धि का महत्वपूर्ण योगदान है।
0: बिल्कुल मनीषा, वैज्ञानिक सोच का अर्थ केवल प्रयोगशाला में काम करना नहीं, इसका अर्थ है हर बात को समझने की कोशिश करना, अंधविश्वास की बजाय प्रमाण पर विश्वास करना, समस्या आने पर घबराने की बजाय समाधान ढूंढना, नई तकनीक अपनाने का साहस रखना। यदि किसान नई खेती की तकनीक अपनाता है, यदि विद्यार्थी नई जानकारी सीखता है। यदि महिलाएं नए कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बनती है तो यह भी वैज्ञानिक सोच का ही हिस्सा है। कई लोग सोचते हैं कि चंद्रयान जैसा मिशन का गांवों से क्या संबंध है, लेकिन सच्चाई यह है कि अंतरिक्ष तकनीक का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचता है।
1: बिल्कुल
0: कहना चाहें

0: कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वागड रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

भाई बोनो, घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पारशर। स्वागत करते हो दोस्तों आप सभी का फिर से फिल्मों की और फरमाइशों की दुनिया में दोस्तों। और आप सभी सुन रहे हैं वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश को। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपको ही आपके द्वारा भेजे गए फिल्मी नगमों से रूबरू करवाते हैं। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से सिलसिला श्रोता साथियों ऐसे ही हमारा आपके साथ बना रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला हमारा और आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच श्रोता साथियों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों हमें इंतज़ार रहेगा आपकी फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और गीतों के माध्यम से हम नई नई फरमाइशों को पूरी करते हैं श्रोता साथियों, क्योंकि हम देखते हैं कि संगीत जो होता है वो दिलों को जोड़ने का सबसे खूबसूरत माध्यम होता है। तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सफ़र अभी शुरू हुआ है श्रोता साथियों। तो बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश आई रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल हैं पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशा शिंदे, शिंदे कृष्णा घोड़के जी। और भी दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बक्सर बिहार से, जयराम बिन, सीता मुन्नी देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रद्युमन और प्रीतम कुमार जी। काका कैठेड़ मणिया से जुड़ना चाह रहे हैं राजकुमार, जानकी देवी, पुनीत कुमार, सपना कुमारी और भावना कुमारी जी। मस्तानपुरना जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। बागपत से हैं आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान सादिक अली खान, आसिफ खान, सारिक अली खान। फर्रुखाबाद यूपी से सूरज चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबादा चौरसिया जी।

कोपरगांव से हैं सुरेश मलोड़े, वर्षा मलोड़े, शेवगांव से श्रीराम गोंदली, उषा गोंदली जी, नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जलाना शहर से सोमनाथ गज जाधव, गीता जाधव, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ संगीता जाधव जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पैरों में बंधन है, तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत नेपानगर मध्य प्रदेश से आया है। श्रोता साथियों, फिल्म का नाम है जीत। गीत के बोल हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी है सोनू निगम जी और अलका याग्निक जी ने। फरमाइश का करता इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर्ष शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन जी शाह, राजेंद्र शाह, सुषमा कपूर जी। मजनू का टिल्ला से भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। फरमाइश करता है कमल बालूचा, मधु बालूचा, सागर बालूचा, उमक मलिक का कांशा मलिक, माही मलिक जी। कोकाबिलाई से जुड़ रहे उत्तम सिंह चंगेल, मोर्य चंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष चंगेल, नंदिनी चंगेल। सुकरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, आदित्य और अंजलि चंगेल। सुनीता शिंदे, यशाज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के, रोहिदास चौक पंडरपुर से जुड़ना चाह रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं लोहेड़ा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीष देवी जी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा जी। साथियों, नवाशहर से जुड़ रहे सुरेंद्र सांधु, अनिता सांधु, रितेश सांधु, रोहित सांधु, शिक्षा सांधु, प्रतीक्षा सांधु और मेक्स जी। तो आइए दोस्तों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद मैं अनुमति चाहूंगी फिर से अगली फरमाइश की ओर बढ़ने की। दोस्तों, अगली फरमाइश आई है कश्मीर से। फिल्म का नाम है कोई मिल गया। गीत के बोल भी यही है श्रोता साथियों। इस गीत को आवाज़ दी उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहा है कश्मीर से फेरजारा मिराजुद्दीन नजमुद्दीन कासिरुद्दीन। लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, कुंती साहू जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ जी। और भी श्रोता साथी हरियाणा से हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। और भी श्रोता साथी हैं जो परिवार के सदस्यगण जुड़ रहे हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामरे का नाम मीना इशुल विपुल कामड़े जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं बलकर्ण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, मुरली अमित वर्मा जी। खंडवा मध्य प्रदेश से श्रोता साथी इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं सारिया डावर, हलीमा डावर, जिक्रा डावर, आयशा खत्री, फातिमा खत्री। खंडवा से सैक सईद रही अनस भाई जी। बोरखेरा पित्रामल से हैं विनोद मोड़त, नेहा जैन, दीपक मयक मोड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार जी, दीक्षा कुश मोड़त जी। इसी बीच और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं गाजियाबाद से शिशपाल अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर बेबी अंसारी, डब्ल्यू अंसारी। गुजरात से अजित कुटरिया। और अम्बाला से हैं संदीप जी, राकेश जी। बक्सर से हैं इजराज वली अंसारी जी। क्लब से हैं सुना। बिहार से श्रोता साथियों सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली शर्मा, अनामिका शर्मा। शिव मंदिर से जुड़ना चाह रहे हैं राजू बनारसी, राजेश कुमार यादव जी। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से हैं राजेश से सुरखा सेन। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुश्रीवास, विवेक श्रीवास, बीबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो मानस राज। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं कोई मिल गया। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। इस गीत को आवाज़ दी कुमार सानू जी और अनुराधा पोडवाल जी ने। ये फरमाइश हमारे बीच आई है साथियों गिरडीह झारखंड से। सुनना चाह रहे हैं इस गीत को मोहम्मद यासिन अनजान, सावन नवाज, असन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और साधिया जी। और भी श्रोता साथी मनोरंजन करना चाह रहे हैं, एटा से नसीब हसन अब्बासी, शहनाबाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनाफियस अब्बासी और असिंध वारसी जी। छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हियांश कुमार चंदन। मधुबनी बिहार से हैं शबीर परवाना, शाहिद अली, जाहिद अली जी और शाहिद अली जी। जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ गुणाने, अचनाताई गुणाने जी। सिरसा से हैं हृदयश्याम शर्मा, इंद्र शर्मा, सार्थक सचिन शर्मा, रोहित शर्मा जी। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिणी बघेल, साहिल भारती बघेल। पथरिया छत्तीसगढ़ से हैं नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम जी। जफराबाद से हैं सुधाकर राजे जादव, प्रशांत राजे जादव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, पणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख, कल्पना देशमुख। छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। श्रीरामपुर से अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुमार, रचना कुमार। पुनावले से अजय सोनवाने, करिश्मा सोनवाने, अविका सोनवाने, शायसा सोनवाने जी। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी। बक्सर बिहार से सफरुद्दीन अंसारी, खातून अंसारी, सुरित रमेश साहू। डुमराव बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोना मदीबा, दानिश अंसारी जी। बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से एजीराज अंसारी, आसमा खातून अंसारी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश आई है मलयान सरदना मेरठ से। फिल्म का नाम है दुश्मन। गीत के बोल हैं, मैंने देखा तूने देखा। इस गीत को आवाज़ दिए किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहा है नील जैन, सैम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवेम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। मलकापुर से जुड़ रहे महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नाजी धाड़े, सप्पल धाड़े, अजय खिरोड़कर। सहारनपुर से सैयद मसूर, साइना अक्सा, नाजमा आफिया इब्राहिम, सद्दाम जी। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी जी। गंजुड़वारा से जुड़ना चाह रहे शमशुल कमर राय, शाइन फातिमा, अदनान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। गंजुड़वारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, बेगम अंसारी, एयान अंसारी, उस्मान अंसारी, याशिन हाशमी, शमशुल कमर राय। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, ईशान छिपा जी। गंजुड़वारा से हैं मोहम्मद याशिन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसिफ हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी जी। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। दादरी गेंद भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल कणी कुणील और कपिल कुणाल मेहरा। हजाना से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंका भाटिया जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, मैंने देखा तूने देखा।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे भी चाहिए है, मैं आपको बताना चाहूँगी। दोस्तों, जमशेदपुर से आई है फरमाइश, करता जुड़ना चाह रहे हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू पप्पी भाटिया। इन श्रोताओं की फरमाइश है लोफर फिल्म का गीत कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं और भी जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संध्या शिवम कोलाम और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। साथियों, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नरवाड़कर, निमान नवाड़कर, विशाल नवाकर, नारायण इंगले, कमल इंगले और आशीष इंगले जी। और भी श्रोता साथी, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति जी शाह, शुरभी जी शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजेंद्र जी शाह, सुषमा कपूर जी। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हम हमारी अगले फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगले फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है मलयान सरधना मेरठ से। फिल्म का नाम है जिस्म, गीत के बोल हैं आवारापन बंजारापन। गीत के बोल हैं श्रोता साथियों और फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं अनिल जैन, संयम जैन, जैन साहब जी, मुस्कान जैन, जीवीएम जैन जी और भी दोस्त जुड़ रहे हैं बोरखरा पित्रामल से, विनोद मुड़न, देहा नेहा जैन, दीपक मयक मुड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार जी, दीक्षा कुश मुड़त जी। नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर्षा, कुशल शाह, नीति जी शाह, सुरभि जी शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजेंद्र शाह, सुषमा कपूर जी। यूपी से जुड़ना चाह रहे हैं सूरज चुरैसा, सरोज चुरैसा, सुभादा चुरैसा और भी श्रोता साथी हैं। जुड़ना चाह रहे हैं हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा निशा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन साहू, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। इसी बीच हमारे और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं कासगंज से एम्स असलम सेफी, जिबिनिस्सा बिकम, अक्रम सेफी, साइद अली सेफी, सोनी सेफी। इसी बीच श्रोता साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में, पंडरपुर से हैं जाखिल मुलानी, सुबयान सलमा, मुमताज दिलसाद, नसीर भी बानो भी भाषा मुलानी। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नाशिद शेख, नादिर नाशिद, शाहिद शाहिद, गोविंद बोना, अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर जी। इसी बीच श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अहिल्या नगर से हैं बाबा साहेब कंगणक्कर, साकरबाई कंगणक्कर, परमेश्वरी रोहिणी जी, श्रावणी ईश्वरी और कंगणक्कर परिवार के सभी सदस्यगण। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आवारापन बंजारापन। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारेशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं तो आप भी आपके फरमाइश के गीतों को हम तक पहुँचा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। फिल्म का नाम है प्रोफेसर, गीत के बोल हैं आवाज़ देकर हमें तुम बुलाओ। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने और मोहम्मद रफ़ी जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है राजू मिलगानी, सुभाष मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हंगोने, योगिता कुमारी, प्रणाली पार्थ जी और हंगोने परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ना चाह रहे हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखी लालची वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है अकोट से विनायक भेंडे, श्रीमती मंगला जी भेंडे, शुभम भेंडे, पवन जरिए, सजीव जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आवाज़ देकर हमें तुम बुलाओ। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने और मोहम्मद रफ़ी जी ने। तो श्रोता साथियों, आप सभी बनी रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपके अपने फरमाइश के गीतों को वाग रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ चीला कोरबा से। फिल्म का नाम है सबक, गीत के बोल हैं बरखा रानी जरा जम के बरसों। इस गीत को आवाज दी है मुकेश जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, प्रश्नचिन वायल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानविजी देशमुख, कुमारी कनप्राज देशमुख। इसी बीच जुड़ना चाह रहे सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडतकर, शुभम वडतकर, पन्नोजी वडतकर। इस गीत के अनुरोध करता है गंजडुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाच, नवाजी शेख, दानी शेख, अमन अफरीदी जी और राधा नाम देव जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य दी कसाना। मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी डांगी। इस गीत के अनुरोध करता है धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसार सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं बरखा रानी जम के बरसों। तब तक आप सभी बने रहिएगा श्रोता साथियों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने मुकेश कुमार जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे बरका रानी जरा जम के बरसो। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अस्तुपुरा जिला महू से। फिल्म का नाम है आशा। गीत के बोल है शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मजीर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गांजीपुर से जुड़ना चाह रहे हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला जी आजाद। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे मॉडल ट्यून कर्नल सी, सुधीर नूतप, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, ईश्वरी शर्मा, किरण ठाकुर। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां जी। इस गीत के अनुरोध करता है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से साईद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नूरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से जुड़ रहे हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं हर्षा रामेकर, दीपिका रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्राजी रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। कुंभार गली कोलगांव से जुड़ना चाह रहे हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं शीशा हो या दिल टूट जाता है। फिल्म का नाम है आशा। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जाखोत राजस्थान से। फिल्म का नाम है चिराग। गीत के बोल हैं चाई बरका बाहर पड़े। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से। हिमकेश्वर शाहू, करण शाहू, राहुल शाहू, चंपाजी शाहू। इस गीत के अनुरोध करता है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा, सोनम जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, निट्टू लक्ष मल्होत्रा, लड्डू कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रही है पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, भाविका सिक्का, डुग्गूजी सिक्का। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बुलढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन जी पाटिल। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चाय बरका बाहर पड़ी अंगना। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा श्रोता साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकट रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने और शब्बीर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इज़ार, नरगिस जी खातून और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश जी कड़वासरा और युद्धव जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दिल्ली से। मदन चक्रवर्ती, राजेश चड्डा जी। इस गीत की अनुरोध करता है पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार झांझोरिया, गीता रानी झांझोरिया, गंदीप झांझोरिया, अर्जु झांझोरिया और गुड्डू जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं झारखंड से अब्बास आलम, मजद अली, लाडली निशा और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से सोमदंत, केरव ज्योति और गुरमत जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से शाहजी भोड़के, श्रीमती नंदा जी भोड़के, हनुमान जी भोड़के। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रतीत जी संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चनाताई गुड़ाने, प्रणय प्रसिद्धि हे रामन जी शेंडे। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बुलंदशहर से। फिल्म का नाम है एक फूल दो माली, गीत के बोल ही सैया ले गए जिया। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजानजी अब्बासी और अबानजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से श्याम कीटी, वंदना कीटी, कार्तिक जी कीटी और भाविका जी कीटी। इस गीत के अनुरोध करता है अतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, सुप्रसाद जयसवाल, अपनव जयसवाल, राखी जयसवाल, तृप्ति जी जयसवाल और दुर्गेश्वरी जयसवाल। पटियाकला दुर्ग से जुड़ना चाह रहे हैं शशंक शाहू, सीमा शाहू, सुजाता शाहू और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बीबी वामिका वानी जी थांदी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका जी दली। पुनावले पुणे से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनवनी, करिश्मा सोनवनी, अविका सोनवनी, विशाखा सोनवनी। इस गीत के अनुरोध करता है छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सांबली पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल जी राजेश। कोपरगांव से जुड़ना चाह रहे हैं पेंटर मतीन मसूदा, दिया और दानिश खान। दिल्ली से जुड़ रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतनी मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधानजी खुराना। इसे भी जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता, सुमित, सोमो और मानस सिंह राज। मस्तानपुरा से जुड़ना चाह रहे अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज और राजपूत जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सैया ले गए जिया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा श्रोता साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है वासिम महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है लोफर। गीत के बोल हैं, आज मौसम बड़ा बेईमान है। इस गीत की फरमाइश करता है मास्टर विठल सुरेशी, शिशमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, 84 फरुखाबाद 84 जुड़ना चाह रही हैं, सूरी 84, श्रीमती सरो 84, सबोच सलोनी 84, संजू लल्ला 84, पवन जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, आगरा सी, योगेश नायक जी, कासगर जी, सरिता 84, सुमित 84, वीर और अभीर जी 84, कानपुर से जुड़ना चाह रहे हैं, सुजाता 84, पंकज 84, पीयू और दिया जी 84। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं जलालाबाद वेस्ट सी, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ाने, हीरामन शेंडी, शीला देवी शेंडी और सिद्धार्थ जी गुड़ाने। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, निशा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन शाहू जी। इस गीत के अनुरोध करता है बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल हैं, आज मौसम बड़ा बेईमान है।

श्रोता साथियों, अभी हमने मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, आज मौसम बड़ा बेईमान है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है आँखें। गीत के बोल ही मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजु योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से। सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, मनीष वर्मा, रेहान खान, बेबी वेदई जोशी, हंसिका जी जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रही पूनम नायडू जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल ही मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। तो श्रोता साथियों, आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। और श्रोता साथियों, यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

आसपास बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे

कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:00। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारोशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारोशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8:00। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुख करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है। और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ

0: अवसरों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है।
1: वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है।
0: प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
2: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आप कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थी जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है अंतरिक्ष विज्ञान और युवा सपनों की नई ऊंचाइयों की ओर को लेकर।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि कशिश, आसमान सीमा नहीं बल्कि नई शुरुआत है, और ये कथन आज के भारत के युवाओं के लिए पूरी तरह सार्थक सिद्ध हो रहा है।
0: बिल्कुल,
1: कभी अंतरिक्ष केवल कल्पनाओं, कहानियों और विज्ञान कथाओं का विषय माना जाता था, लेकिन आज अंतरिक्ष विज्ञान मानव जीवन की वास्तविकता बन चुका है। भारत ने भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है और विश्व के अग्रणी अंतरिक्ष देशों में अपनी पहचान भी बनाई है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान के युवा सपने क्या है और ये नई ऊंचाइयों को किस प्रकार से छू रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना श्रोता साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा पहले गीत सुनवा दे हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान के युवा सपने और नई ऊंचाइयों को लेकर।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, जब हम रात के आकाश में चमकते सितारों, चांद और ग्रहों को देखते हैं तो हमारे मन में ढेर सारे प्रश्न उठते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम सोचते हैं कि आखिर इन तारों के पार है क्या, क्या वो जीवन है या फिर क्या इंसान इससे आगे पहुंच सकता है।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब खोजने का नाम है अंतरिक्ष विज्ञान। आज भारत, जैसा कि आपने बताया था कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी शक्तियों में से शामिल है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 और गगनयान जैसे मिशनों ने ये साबित कर दिया है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। ऐसे समय में जागृति जी, युवाओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान केवल एक विषय नहीं है बल्कि नए अवसरों, नई सोच और नए भविष्य का द्वार बन चुका है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि आज का युवा केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं है कशिश, बल्कि वो वैज्ञानिक, शोधकर्ता, इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री, नवाचारकर्ता बनने का सपना देख रहा है।
0: बिल्कुल,
1: अंतरिक्ष विज्ञान युवाओं के लिए केवल एक विषय नहीं श्रोताओं, बल्कि असीम संभावनाओं का द्वार है। ये उन्हें बड़े सपने देखने, नई खोज करने और मानवता के भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। हम देखते हैं कशिश कि अंतरिक्ष विज्ञान वो विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के बाहर मौजूद ग्रह, तारे, उपग्रह, आकाश गंगाओं, ब्रह्मांड और अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें रॉकेट तकनीक, उपग्रह निर्माण, अंतरिक्ष यान, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और नई वैज्ञानिक खोजें शामिल हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज अंतरिक्ष विज्ञान केवल वैज्ञानिक प्रयोगों तक सीमित नहीं है श्रोताओं, बल्कि इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान, संचार शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा अनेक क्षेत्रों में हो रहा है।
0: बिल्कुल जागृति जी, और हम देखते हैं कि भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद भी अंतरिक्ष विज्ञान में अद्भुत सफलता प्राप्त की है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा इसरो की स्थापना हुई थी। शुरुआत बहुत ही साधारण थी जागृति जी, लेकिन वैज्ञानिकों की मेहनत और दृढ़ संकल्प ने भारत को एक नई पहचान दिलाई। सबसे पहले श्रोता साथियों, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, इसके बाद कई सफल उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। वहीं वर्ष 2014 में भारत का मंगलयान पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया।
1: बिल्कुल,
0: जो विश्व के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद श्रोता साथियों, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके भारत का नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। वहीं आदित्य L1 मिशन के माध्यम से सूर्य का अध्ययन भी किया जा रहा है और गगनयान मिशन भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारी कर रहा है। यानी कि जागृति जी, इन सभी उपलब्धियों ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत का युवा किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि भारत की अंतरिक्ष यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक है। सीमित संसाधनों के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर विश्व को अपनी क्षमता का परिचय दिया है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत छोटे छोटे प्रयोगों से हुई थी, लेकिन आज भारत ने चंद्रमा और मंगल तक सफल मिशन भेजकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है।
0: बिल्कुल,
1: भारत की प्रमुख उपलब्धियां आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण, PSLV और GSLV जैसे विश्वसनीय प्रक्षेपण यान, मंगलयान मिशन, चंद्रयान मिशन, आदित्य L1 मिशन, गगनयान मिशन की तैयारी और सैकड़ों विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण, इन उपलब्धियों ने भारतीय युवाओं के आत्मविश्वास को नई उड़ान दी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बहुत अच्छी तरीके से ये बात कर ही रहे हैं कि किस प्रकार से अंतरिक्ष विज्ञान के जो युवा सपने हैं वो आज पूरे हो चुके हैं।
1: बिल्कुल,
0: और आगे भी ये बातें हमारी श्रोता साथियों से ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी अंतरिक्ष विज्ञान और युवा सपनों की नई ऊंचाइयों को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: यही बात करते हैं कशिश हमारे श्रोता साथियों को, हम बताते हैं कि युवाओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों, हम देखते हैं कि आज विज्ञान और तकनीक का युग है। आने वाला समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष अनुसंधान और नई तकनीकों का होगा। ऐसे में युवाओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान बहुत सारे अवसर लेकर आया है।
1: बिल्कुल,
0: अंतरिक्ष विज्ञान युवाओं को वैज्ञानिक सोच विकसित करना सिखाता है, जिज्ञासा और खोज की भावना बढ़ाता है, समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता देता है, नवाचार और अनुसंधान के लिए प्रेरित करता है, साथ ही आत्मविश्वास और धैर्य विकसित करता है और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का अवसर देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अब प्रश्न ये उठता है कि अंतरिक्ष विज्ञान युवाओं के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है।
0: बिल्कुल,
1: तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का युवा केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि नई नई खोज करना चाहता है, नए आविष्कार करना चाहता है और दुनिया को बदलने का सपना देखता है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान ने युवाओं को यही अवसर दिया है। यह विज्ञान जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करते हैं और नई तकनीकों के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं युवाओं को।
0: बिल्कुल,
1: हम देख सकते हैं कि जो युवा अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ते हैं वे केवल वैज्ञानिक ही नहीं बनते बल्कि इंजीनियर, डेटा विश्लेषक, कंप्यूटर विशेषज्ञ, रोबोटिक्स इंजीनियर, गणितज्ञ, डिजाइनर और शोधकर्ता भी बन सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि युवाओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में ढेर सारे ऐसे रोजगार के अवसर हैं जो युवा साथियों को सफल व्यक्ति बनने में मदद करते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, हर युवा के मन में कुछ बड़ा करने का सपना होता है। पहले लोग डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बनने का सपना देखते थे, लेकिन आज युवा अंतरिक्ष वैज्ञानिक, सैटेलाइट इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखते हैं।
1: जी हाँ,
0: साथ ही ये बदलाव भारत की वैज्ञानिक प्रगति का प्रमाण है। आज हम देख रहे हैं कि देश के अनेक विद्यालय और महाविद्यालयों में विज्ञान मेलों, रोबोटिक्स प्रतियोगिताएं, अंतरिक्ष क्लब और नवाचार प्रयोगशालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को नई दिशा मिल रही है।
1: बिल्कुल,
0: अक्सर लोगों को लगता है कि अंतरिक्ष विज्ञान केवल वैज्ञानिकों के लिए होता है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। श्रोताओं, आज हमारे मोबाइल फोन, GPS, इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा, मौसम की जानकारी, टीवी प्रसारण, डिजिटल बैंकिंग, कृषि सलाह और आपदा चेतावनी, ये सारी अनेक सुविधाएं अंतरिक्ष तकनीक की देन है।
1: बिल्कुल,
0: किसानों को मौसम की जानकारी मिलती है, मछुआरों को समुद्र की स्थिति का पता चलता है, आपदा आने से पहले लोगों को चेतावनी मिल जाती है कशिश, और साथ ही श्रोताओं, दूर दराज क्षेत्रों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुंच रही है।
1: जी बिल्कुल,
0: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान आम नागरिक के जीवन को बेहतर बना रहा है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। साथ ही देखते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान हमें ये भी सिखाता है कि असफलता कभी अंत नहीं होती।
0: बिल्कुल
1: साथियों, भारत का पहला चंद्र मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसके बाद भी हार नहीं मानी। जागृति जी, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है और चंद्रयान 3 को सफल बनाया, और यही संदेश युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि परीक्षा में असफलता मिले साथियों, यदि नौकरी न मिले, यदि जीवन में कठिनाइयां आ जाए, तो रुकना आपको नहीं है बल्कि नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि भारत का युवा आज स्टार्टअप संस्कृति से जुड़ रहा है। कई युवा छोटे छोटे उपग्रह बनाने, ड्रोन तकनीक विकसित करने और नई अंतरिक्ष तकनीकों पर कार्य कर रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, सरकार और कई संस्थाएं युवाओं को शोध, नवाचार और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। आज निजी क्षेत्र भी अंतरिक्ष अनुसंधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
1: जी हाँ,
0: इससे रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आपको कहना चाहेंगे श्रोताओं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ये जो कार्य है वो चुनौतियों से भी कम नहीं है। अंतरिक्ष विज्ञान जितना आकर्षक है उतना ही कठिन भी है कशिश।
1: बिल्कुल,
0: इसके सामने कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि महंगी तकनीक, लंबा शोध कार्य, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की आवश्यकता, वैज्ञानिक संसाधनों का विकास, अंतरिक्ष मलबे की समस्या, पर्यावरणीय चुनौतियां और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। साथ ही इन चुनौतियों का सामना केवल मेहनत, अनुसंधान और नवाचार से ही किया जा सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का भविष्य हमारे युवाओं के हाथ में है। यदि युवा विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करेंगे तो नई तकनीकों को वो सीख पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: जिसके कारण दोस्तों कई शोध की दिशा में वे आगे बढ़ पाएंगे और भारत विश्व में और अधिक मजबूत और वैज्ञानिक राष्ट्र बन सकता है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में हमारे युवा साथियों को चाहिए कि वे विज्ञान विषयों को रुचि से पढ़ें, गणित और कंप्यूटर का ज्ञान बढ़ाएं, विज्ञान प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहें, साथ ही नई खोज करने का साहस रखें। हम देखते हैं जागृति जी कि अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रामीण युवाओं के लिए भी ढेर सारे अवसर हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे युवाओं को लगता है कि अंतरिक्ष विज्ञान केवल बड़े शहरों के विद्यार्थियों के लिए ही है, लेकिन ये सोच गलत है। आज साथियों, इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पुस्तकालय, विज्ञान चैनल और सरकारी योजनाओं के माध्यम से गांव का युवा भी अंतरिक्ष विज्ञान सीख सकता है।
0: बिल्कुल,
1: देश के अनेक वैज्ञानिक छोटे गांवों और सामान्य परिवारों से निकलकर साथियों विश्व स्तर तक पहुंचे हैं। इसलिए प्रतिभा किसी शहर या आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं होती।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि भारत के अनेक वैज्ञानिकों ने अपने संघर्ष और समर्पण से युवाओं को प्रेरित किया है। साधारण परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है।
1: बिल्कुल,
0: उनका जीवन ये संदेश देता है श्रोताओं की सफलता संसाधनों से नहीं बल्कि मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से मिलती है।
1: जी हाँ,
0: अंतरिक्ष विज्ञान केवल ग्रहों और तारों की खोज नहीं है बल्कि मानव क्षमता, जिज्ञासा और साहस का प्रतीक है।
1: बिल्कुल,
0: ये हमें सिखाता है कि यदि हमारे सपने बड़े हों और उन्हें पूरा करने का संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। आज भारत का युवा नई सोच, नई ऊर्जा और नई तकनीक के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: उसके सपने केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्र की प्रगति और मानवता के कल्याण से जुड़े हुए है।
1: जी हाँ,
0: यही युवा आने वाले समय में भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान, नवाचार और विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसलिए हमें विश्वास रखना होगा श्रोताओं कि सपने तभी साकार होते हैं जब उनमें ज्ञान का प्रकाश, परिश्रम की शक्ति और देश के प्रति समर्पण का भाव जुड़ा हो।
1: बिल्कुल,
0: यदि प्रत्येक युवा विज्ञान को अपनाकर नवाचार की राह पर आगे बढ़े कशिश, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा। तब सचमुच हमारे युवाओं के सपने धरती की सीमाओं से निकलकर अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और भारत ज्ञान, विज्ञान तथा आत्मनिर्भरता के नए युग का मार्गदर्शक बनेगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं और अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है रटने की बजाय समझकर सीखने की आदत कैसे विकसित करें। हम देखते हैं कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छा रहे, अच्छे अंक लाए, जीवन में आगे बढ़े, लेकिन कई बार पढ़ाई का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना बनकर रह जाता है।
0: बिल्कुल।
1: बच्चे किताबों के उत्तर याद कर लेते हैं, लेकिन जब वही बात व्यवहार में लागू करने या अपने शब्दों में समझाने की बारी आती है तो वे असमंजस में पड़ जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसका सबसे बड़ा कारण है रटकर पढ़ने की आदत।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी जी,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवा दे पहले।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो आपको बता ही चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि रटने की बजाय समझकर सीखने की आदत हम बच्चों में कैसे विकसित कर सकते हैं। जैसा कि अंजलि जी आपने बताया था कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छे अंक लेकर आए और जीवन में बहुत आगे बढ़े, लेकिन कई बार पढ़ाई का उद्देश्य केवल परीक्षा प्राप्त करना बनकर ही रह जाता है और बच्चे रटने लग जाते हैं। तो ऐसे में श्रोता साथियों, रटकर पढ़ना कुछ समय के लिए परीक्षा में मदद कर सकता है, लेकिन यह ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने, सोचने की क्षमता विकसित करने और जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने में उतना उपयोगी नहीं माना जाता।
1: बिल्कुल,
0: इसके विपरीत हम देखते हैं अंजलि जी कि जब बच्चा किसी विषय को समझकर सीखता है तो वह उसे लंबे समय तक याद रखता है।
1: जी हाँ।
0: उसका सही उपयोग करना सीखता है, नए प्रश्नों का उत्तर भी आत्मविश्वास के साथ वह दे पाता है।
1: बिल्कुल कशिश, यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि बचपन वह समय है जब बच्चों के मन में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है।
0: बिल्कुल,
1: वे हर बात पूछना चाहते हैं, आसमान नीला क्यों है, बारिश कैसे होती है, पौधे कैसे उगते हैं, पक्षी कैसे उड़ते हैं। लेकिन कई बार हम उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के बजाय जल्दी से उत्तर देकर यह कह देते हैं कि इतने सवाल मत पूछो।
0: बिल्कुल,
1: उनकी सीखने की स्वाभाविक इच्छा कम कर देती है, जबकि यही प्रश्न पूछने की आदत उन्हें समझकर सीखने की दिशा में आगे बढ़ाती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आज शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चों में सोचने, समझने, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना भी है।
0: बिल्कुल,
1: यदि बच्चा केवल उत्तर याद करता है तो परीक्षा के बाद उसे भूल सकता है, लेकिन यदि कशिश वह विषय का अर्थ समझ लेता है तो वही ज्ञान जीवन भर उसके काम आता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अब यही अगर श्रोता साथियों को हम बताएं तो कह सकते हैं कि रटने की आदत कई कारणों से विकसित होती है। कभी श्रोता साथियों, परीक्षा में अच्छे अंक लाने का दबाव बच्चों पर रहता है, कभी समय की कमी, कभी पढ़ाने का तरीका और कभी माता पिता की अपेक्षाएं। अंजलि जी, ये सभी चीजें बच्चों को केवल याद करने की ओर ही धकेल देती है। कई बच्चे ये सोचने लगते हैं कि जितना अधिक याद करेंगे उतना अधिक सफल होंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वास्तविक सफलता केवल याद रखने में नहीं है, बल्कि समझने और सही उपयोग करने में है। माता पिता इस आदत को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वो कैसे साथियों? तो जब बच्चा पढ़ाई करे तो उसे केवल यह न पूछे कि पाठ याद हुआ या नहीं, बल्कि ये पूछे कि तुमने आज क्या नया सीखा है।
1: बिल्कुल,
0: या तुम इसे शब्दों में समझा सकते हो मुझे। ऐसे प्रश्न श्रोता साथियों बच्चों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करते हैं।
1: बिल्कुल, इसी के साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि घर में पढ़ाई को केवल किताबों तक सीमित न रखें। यदि बच्चा पौधे के बारे में पढ़ रहा है तो उसे बगीचे में ले जाएं। यदि वह पानी के महत्व के बारे में पढ़ रहा है तो घर में पानी बचाने के छोटे छोटे तरीके अपनाने को कहें। यदि वह गणित सीख रहा है तो रोजमर्रा की खरीदी या घर के छोटे हिसाब किताब में उसे शामिल करें। जब पढ़ाई का संबंध जीवन से जुड़ता है कशिश, तो सीखना आसान और रोचक बन जाता है, और इसमें शिक्षकों की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि कक्षा में बच्चों को केवल उत्तर याद करने के बजाय प्रयोग, कहानी, चित्र, गतिविधियां और चर्चा के माध्यम से पढ़ाया जाए तो बच्चे विषय को अधिक गहराई से समझते हैं।
0: जी जी।
1: जब शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने, अपने विचार रखने और गलत उत्तर देने पर भी प्रोत्साहित करते हैं, तब बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सीखने को बोझ नहीं बल्कि आनंद समझने लगते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही है, और जैसा कि बातचीत का विषय भी काफी महत्वपूर्ण है हमारे माता पिताओं के लिए कि किस प्रकार से बच्चों को हम रटने से ज्यादा समझने की आदत विकसित करवाएं, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने शिक्षकों की भूमिका के बारे में जाना था, यही अब बात आती है कशिश के, हमें ये भी समझना होगा कि हर बच्चा एक जैसा नहीं सीखता। कोई देखकर जल्दी सीखता है, तो कोई सुनकर, तो कोई लिखकर, तो कोई करके। इसलिए बच्चों की तुलना करने के बजाय उसके सीखने की शैली को समझना अधिक आवश्यक है। यदि हम हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर दें, तो वह बेहतर परिणाम दे सकता है।
1: बिल्कुल।
0: आज मोबाइल और इंटरनेट के दौर में जानकारी प्राप्त करना आसान हो गया है, लेकिन कशिश जानकारी और ज्ञान में अंतर होता है। केवल जानकारी इकट्ठा कर लेना पर्याप्त नहीं, उस जानकारी को समझना, परखना और सही जगह उपयोग करना ही वास्तविक शिक्षा है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए बच्चों को केवल उत्तर खोजने की नहीं, बल्कि उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया समझाने की आदत डालनी चाहिए। बच्चों में कहानी पढ़ने की आदत भी समझाने की क्षमता बढ़ाती है।
1: बिल्कुल।
0: कहानी पढ़ते समय बच्चा पात्रों के बारे में सोचता है, घटनाओं को जोड़ता है और अपने मन में चित्र बनाता है। इससे श्रोता साथियों उसके कल्पना शक्ति, भाषा और तर्क शक्ति का विकास होता है। इसी तरह पहेलियां, विज्ञान के छोटे प्रयोग, शैक्षणिक खेल और समूह में चर्चा जैसी गतिविधियां भी बच्चों को रटने के बजाय समझने की दिशा में आगे बढ़ाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि बच्चों को गलती करने का अवसर दिया जाए, क्योंकि जब बच्चा गलती करता है तो उसे समझकर वह सुधारता है और तभी उसे वास्तविक सीख मिलती है। यदि अंजलि जी हर गलती पर डांट मिलेगी तो बच्चा केवल सही उत्तर याद करने की कोशिश करेगा, सीखने की नहीं। इसलिए घर और स्कूल दोनों जगह ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ गलती को असफलता नहीं बल्कि सीखने का अवसर माना जाए।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफल होना नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन को समझना और उसे बेहतर बनाना भी होना चाहिए। क्योंकि अंजलि जी, जब बच्चे समझकर सीखते हैं तो वह केवल किताबों के विद्यार्थी नहीं रहते, बल्कि जीवन के विद्यार्थी बन जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वे हर परिस्थिति में सोचते हैं, सवाल पूछते हैं और नए नए समाधान खोजते हैं, साथ ही आत्मविश्वास के साथ आगे भी बढ़ते हैं।
0: जी हाँ। इसी के साथ श्रोता साथियों, हम बच्चों पर केवल अंक लाने का दबाव न डालें, बल्कि उनमें सीखने का आनंद जगाएं, उन्हें प्रश्न पूछने दें, प्रयोग करने दें, गलती करने दें और अपने अनुभवों से सीखने दें। क्योंकि रटकर सीखा हुआ ज्ञान कशिश समय के साथ धुंधला पड़ सकता है, लेकिन समझकर सीखी गई हुई बातें जीवन भर मार्गदर्शन बनती है। बच्चों को केवल उत्तर याद कराना आसान है, लेकिन उन्हें सोचने की आदत देना सबसे बड़ी सीख है।
1: जी हाँ।
0: जब बच्चे समझकर सीखना शुरू करते हैं श्रोता साथियों, तभी वे आत्मविश्वासी, रचनात्मक, जिम्मेदार और जीवन की चुनौतियों का सामना करने वाले सच्चे शिक्षार्थी बनते हैं। यही आदत उन्हें केवल एक अच्छा विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि एक जागरूक, संवेदनशील और सफल इंसान भी बनाती है।
1: जी हाँ अंजलि जी। तो दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल उन्हें किताबों का ज्ञान देना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनाना है, जो हर परिस्थिति को सोच सके, समझ सके और सही निर्णय ले सके।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही अपने ज्ञान का उपयोग अंजलि जी समाज के हित में भी कर सके। साथियों, यदि हम अपने बच्चों को बचपन से ही केवल उत्तर याद करने की आदत डलवा देंगे तो वे परीक्षा को तो पास कर लेंगे, लेकिन जीवन की उन परिस्थितियों में असहज हो जाएंगे जहाँ तैयार उत्तर नहीं होते। वही जो बच्चा समझकर सीखता है वह हर नई चुनौती को सीखने के अवसर के रूप में देखता है।
0: बिल्कुल।
1: और आत्मविश्वास के साथ आगे भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल कशिश, हमारे लिए ये भी समझना जरूरी है कि सीखना किसी एक किताब, एक कक्षा या एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो घर, विद्यालय, खेल के मैदान, प्रकृति, समाज और रोजमर्रा के अनुभवों से मिलकर पूरी होती है। जब माता पिता बच्चों को हर छोटी बात का कारण समझाते हैं, जब शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जब परिवार बच्चों की जिज्ञासा का सम्मान करता है, तब सीखना केवल पढ़ाई नहीं रहता बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है। आज के समय में जानकारी की कोई कमी नहीं है। मोबाइल और इंटरनेट पर हर सवाल का जवाब कुछ ही क्षणों में हमें मिल जाता है, लेकिन असली चुनौती उत्तर ढूंढना नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि सही और गलत में अंतर समझना है, तथ्यों को परखना है और उन्हें सही संदर्भ में उपयोग करना है। यही क्षमता समझकर सीखने से विकसित होती है। इसलिए बच्चों को केवल जानकारी देने के बजाय उन्हें विचार, विश्लेषण करना और अपनी समझ बनाना भी सिखाना होगा। हमें बच्चों की सफलता को केवल परीक्षा के अंकों से नहीं मापना चाहिए। एक बच्चा जो अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकता है, नई परिस्थितियों में समाधान खोज सकता है, दूसरों के विचारों का सम्मान करता है और हर दिन कुछ नया सीखने की इच्छा रखता है, वह वास्तव में शिक्षित है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसी शिक्षा ही उसे आत्मनिर्भर, रचनात्मक और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी। साथियों, ऐसे में हम सभी को मिलकर घरों और विद्यालयों में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ बच्चों से केवल ये नहीं पूछा जाए कि आज कितना याद किया, बल्कि ये भी पूछा जाए कि आज क्या समझा गया, आज क्या सीखा और उस सीख का उपयोग आप कहाँ करोगे। श्रोता साथियों, यही छोटे छोटे बदलाव बच्चों के सीखने के तरीकों को बदल सकते हैं और उनके भीतर आजीवन सीखते रहने की आदत भी विकसित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए श्रोता साथियों कि रटी हुई बातें समय के साथ भूल सकते हैं, लेकिन समझकर सीखा गया ज्ञान व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है।
0: जी हाँ।
1: जब बच्चों के मन में अंजलि जी जिज्ञासा, समझ और सीखने का आनंद जागेगा, तब शिक्षा उन्हें बोझ नहीं लगेगी बल्कि उनके सपनों को दिशा देने वाली रोशनी बन जाएगी। हम ऐसी शिक्षा का वातावरण बनाए साथियों जहाँ बच्चे केवल किताबों के उत्तर याद न करें बल्कि जीवन के प्रश्नों का उत्तर खोजने की क्षमता भी विकसित करें। यही सच्ची शिक्षा है, यही सफल बचपन की पहचान है और यही एक जागरूक, सक्षम और संवेदनशील समाज की सबसे मजबूत नींव है।
0: बिल्कुल, तो इस तरीके से आज कृषि कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, मासवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार।

0: वो जो चीजें करते हैं उसमें नुकसान हो जाता है, और एक बार जब उन्हें नुकसान होता है तो वो ये सोचते हैं कि इसमें रखाई क्या है और वो पलायन कर जाते हैं। ऐसे में उन्हें चाहिए कि खेती के जो परंपरागत तरीके हैं वो इधर उधर से सुनकर या वागर रेडियो के माध्यम से, या अपने गांव में कोई व्यक्ति इस तरीके की खेती कर रहा है तो उसके साथ जुड़कर भी इन सारी चीजों को वो ले सकते हैं और अपनी खेती में बदलाव कर सकते हैं।
1: तो बदलाव भी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि खेती में सुधार कर सकते हैं, है ना। और सुधार करने के अलावा ये कर सकते हैं कि खेती को पुनर्स्थापित कर सकते हैं।
0: जी जी बिल्कुल,
1: है ना। जो आप कह रहे हैं कि भाई जैसे कि उनका पलायन की तरफ मन बढ़ता जा रहा है और वो धीरे धीरे जो है खेती को एक अच्छा व्यवसाय के रूप में नहीं देख रहे, तो मुझे श्लोक तो नहीं याद है लेकिन पुराने जमाने में ये कहावत होता था कि शायद सबसे सर्वश्रेष्ठ खेती को माना गया है, उसके बाद दूसरे नंबर पे और नौकरी तो तीसरे नंबर पे, और सबसे बेकार माना गया है मजदूरी करना, है ना। लेकिन अगर उल्टा आज की तारीख में उल्टा, तो अब खेती को जो है लोग
2: उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी ऐसा कुछ बोला जाता था। बिल्कुल बिल्कुल,
1: अब उल्टा हो गया,
2: उल्टा हो गया, अब उत्तम नौकरी हो गई,
1: नीच मानने लगे,
2: नीच मानने लगे। बिल्कुल बिल्कुल,
1: शायद ये बिल्कुल गलत है,
2: बिल्कुल,
1: है ना। तो खेती को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़े बुजुर्गों का एक पीढ़ी का दूसरे पीढ़ी के साथ में बैठना और इस खेती को सुधार करने की तरफ लेके जाना, ये चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो संवाद होंगे तभी सुधार होगा।
0: बिल्कुल सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है। तो इस तरीके से हमारे श्रोता साथियों को आज के कार्यक्रम की जो बातें हैं वो अवश्य पसंद आई होगी। तो आप दोनों कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: बस यही है कि अपने खेती को अपने लेवल पे और अपने परिवार के लेवल पे एक तरह से देखा जाए तो पुनर्स्थापित करने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं उनको किया जाए। साथ ही साथ में उसको इस रूप से देखा जाए कि यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके ऊपर पूरा दारोमदार टिका है।
0: बिल्कुल,
1: कृषि नहीं है तो पोषण नहीं है, पोषण नहीं है तो स्वास्थ्य नहीं है, और स्वास्थ्य नहीं है तो आपका कोई कमाई भी किसी काम का नहीं है।
0: बिल्कुल,
2: और साथ में नमी बनाए रखने के लिए श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि रासायनिक खाद का प्रयोग कम करें और देसी खाद, उकड़े का खाद, इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो ऐसे जो बारिश लंबी जाएगी तो नमी बनी रहेगी।
0: बिल्कुल,
2: और जितना रासायनिक खाद डालेंगे तो हो सकता है इसमें नमी कम रहेगी और फसल का दुरुपयोग होगा।
1: कुछ चीजें ऐसी भी है जैसे कि अभी खास तौर पे अभी चूंकि बारिश खिंच रही है ना, तो ऐसी स्थिति में दो तीन चीजों का बहुत किसान बिल्कुल ध्यान रखें। रासायनिक खाद हो, रासायनिक कीटनाशक हो, किसी भी प्रकार के रासायनिक चीज का अभी उपयोग करना कतई ना करें क्योंकि वो उनकी फसल के लिए घातक हो सकता है।
2: बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: दूसरी तरफ ये है कि निंदाई गुड़ाई जरूर करें, है ना। इस समय निंदाई गुड़ाई पे ध्यान देना जरूरी है, बाकी सब चीजें बाद में हो सकती है। ये समय अगर फसल को नहीं बचाया तो फिर पूरा सीजन चला जाएगा।
0: बिल्कुल। तो सर मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: માઇન બોનું સિમ કે આવડે આપણા વેસમી દીપકજી ને પટેલજી સર જોડે તક હતા ને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા તકી ઘણા કની વાતે વતાડી હે। આશા કરો હો કે આ સબ વાતે આપને કમી હોંગા કેમ કે વે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડ પણ સાથે પહેલા હામરી લાય કર કિતને મોરે પડા સૂટા।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने अपने में देखाए तो आपड़ा ने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है तिरंगे का सम्मान, राष्ट्र का अभिमान। अंजलि, जिस ध्वज की तीन रंगों वाली छाया में करोड़ों भारतीय एक सूत्र में बंध जाते हैं, जिस तिरंगे को देखकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, वो केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम, बलिदान, संविधान और राष्ट्रीय स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है।
1: बिल्कुल,
0: तिरंगे का सम्मान केवल एक औपचारिकता नहीं दोस्तों, बल्कि हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। जब हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, तब हम अपने राष्ट्र, अपने वीर शहीदों और अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सम्मान करते हैं।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और बात भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं तिरंगे का सम्मान राष्ट्र का अभिमान को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि, जिस राष्ट्र का ध्वज ऊंचा रहता है उस राष्ट्र का आत्मसम्मान सदैव ऊंचा रहता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्रिय तिरंगा, केवल तीन रंगों से बना एक कपड़ा नहीं है दोस्तों, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था का विषय है। आस्था, त्याग, संघर्ष, स्वतंत्रता, संविधान और राष्ट्रीय एकता का जीवंत प्रतीक भी है। अंजलि, जब तिरंगा हवा में लहराता है तब उसके साथ हर भारतीय का हृदय भी गर्व से भर उठता है। इसकी प्रत्येक लहर हमें उन वीर सपूतों की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सच्चे स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सच्चा स्वराज तब पूर्ण होता है जब प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे। तिरंगे का सम्मान करना ऐसा ही एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य है। राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना केवल शब्दों से नहीं श्रोता साथियों, बल्कि अपने व्यवहार, विचार और कर्मों से प्रकट होती है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं था, बल्कि वह आजादी की आशा और संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। अनेक स्वतंत्रता सेनानी इसी ध्वज को हाथ में लेकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। 22 जुलाई 1947 को जागृति जी, संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। और 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा गर्व से लहराया था।
0: बिल्कुल,
1: ऐतिहासिक क्षण ने यह संदेश दिया कि भारत अब स्वतंत्र है और अपनी पहचान स्वयं बनाएगा। तब से लेकर श्रोता साथियों आज तक तिरंगा हमारे राष्ट्रीय गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है।
0: बिल्कुल अंजलि, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रत्येक रंग जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश हमें देता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग साहस, त्याग, वीरता और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। श्रोताओं, ये हमें सिखाता है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने स्वार्थ का त्याग करना होगा। बीच का सफेद रंग सत्य, शांति, पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक है। ये हमें जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने, समाज में सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इसी के साथ नीचे का हरा रंग प्रकृति, समृद्धि, कृषि, विकास और खुशहाली का प्रतीक है। ये हमें पर्यावरण संरक्षण तथा संतुलित विकास का संदेश देता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, ध्वज के मध्य स्थित नीले रंग का अशोक चक्र, जिसमें 24 तिल्लियां हैं, निरंतर कर्म, न्याय, प्रगति और गतिशील जीवन का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन और राष्ट्र दोनों तभी आगे बढ़ते हैं जब कर्म निरंतर चलता रहता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि भारत अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं और धर्मों वाला देश है। इतनी विविधताओं के बावजूद जो हमें एक सूत्र में बांधता है वह है हमारा तिरंगा।
0: जी हाँ।
1: जब राष्ट्रीय पर्वों पर पूरा देश तिरंगे के नीचे एकत्र होता है तब यह संदेश मिलता है कि हमारी सबसे बड़ी पहचान भारतीय होना है। तिरंगा किसी एक धर्म, जाति या क्षेत्र का नहीं श्रोता साथियों, बल्कि पूरे भारत का ध्वज है। यह हमें समानता, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं तिरंगे के सम्मान को लेकर, राष्ट्र के अभिमान को लेकर, ये बातें निरंतर आज के इस कार्यक्रम में बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से तिरंगे का गौरवशाली इतिहास रहा और तीन रंग जो है वो किस तरीके से हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। यही बात आती है जागृति जी, शहीदों के बलिदान की अमर कहानी की। श्रोता साथियों, आज हम जिस स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं वह लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है।
1: बिल्कुल,
0: भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, असंख्य ज्ञात अज्ञात वीरों ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है।
1: जी हाँ।
0: सीमा पर आज भी हमारे सैनिक तिरंगे की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर देते हैं। उनके बलिदान के कारण ही जागृति जी हमारा राष्ट्रीय ध्वज गर्व से लहराता है। इसलिए तिरंगे का सम्मान करना उन सभी वीरों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।
1: बिल्कुल अंजलि, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है। तिरंगे का सम्मान केवल कानून का पालन नहीं है दोस्तों, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का परिचायक है।
0: जी जी।
1: जब कोई नागरिक पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगान के समय खड़ा होता है, ध्वज फहराने के नियमों का पालन करता है और तिरंगे को सम्मान पूर्वक संभालता है, तब वो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है। अंजलि,
0: बिल्कुल,
1: तिरंगे का अपमान केवल ध्वज का अपमान नहीं है दोस्तों, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का अपमान है जो इसे अपने गौरव का प्रतीक मानते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज संहिता की जानकारी होनी चाहिए। तिरंगे को सदैव सम्मानजनक स्थान पर लगाया जाना चाहिए, इसे कभी भी जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। श्रोता साथियों, ध्वज के साथ किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार नहीं होना चाहिए। कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय पर्वों के बाद प्लास्टिक के तिरंगे को सड़कों या कचरे में पड़े देखना अत्यंत दुखद है। सच्चा राष्ट्र प्रेम केवल तिरंगा खरीदने में नहीं बल्कि उसका सम्मान पूर्वक उपयोग और संरक्षण करने में है।
1: बिल्कुल अंजलि, हर घर तिरंगा अभियान ने देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की नई भावना जगाई। जब प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराता है तब ये केवल एक उत्सव नहीं होता दोस्तों, बल्कि ये पूरे राष्ट्र की एकता और सहभागिता का प्रतीक बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इस अभियान ने बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। श्रोताओं, भारत विश्व का सबसे युवा देश है, इसीलिए तिरंगे के सम्मान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी युवाओं पर है। अंजलि
0: जी जी,
1: युवाओं को केवल राष्ट्रीय पर्वों पर नहीं बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी देशभक्ति को अपनाना होगा। ईमानदारी से कार्य करना, भ्रष्टाचार से दूर रहना, पर्यावरण की रक्षा करना, संविधान का सम्मान करना, समाज में सद्भाव बनाए रखना और अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये सारी चीजें तिरंगे के सम्मान के वास्तविक रूप है। आज हम देख रहे हैं अंजलि कि सोशल मीडिया के दौर में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि तिरंगे का उपयोग केवल दिखावे या प्रचार के लिए नहीं बल्कि सम्मान और प्रेरणा के लिए हो।
0: बिल्कुल जागृति जी, सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था का विषय नहीं है, यह नागरिकों की चरित्र, जिम्मेदारी और जागरूकता से जुड़ा हुआ विषय है। जब प्रत्येक नागरिक राष्ट्र हित को अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर रखता है तभी सच्चा स्वराज स्थापित होता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि तिरंगा हमें यही संदेश देता है कि हम सत्य, त्याग, शांति, एकता और निरंतर कर्म के मार्ग पर चलें।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा राष्ट्र और अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। तिरंगे का सम्मान केवल जागृति जी ध्वजारोहण तक सीमित नहीं होना चाहिए। जब हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते हैं, स्वच्छता बनाए रखते हैं, करों का ईमानदारी से भुगतान करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं और संविधान का पालन करते हैं और समाज में प्रेम और सद्भाव फैलाते हैं, तब वास्तव में तिरंगे का सम्मान कर रहे होते हैं। राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का कार्य नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की

0: में महत्वपूर्ण कड़ी होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, और इसी के साथ तिरंगा भारत की आत्मा है। ये हमारे इतिहास, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाला राष्ट्रीय प्रतीक है। इसकी प्रत्येक लहर हमें ये याद दिलाती है कि आजादी हमें बिना संघर्ष के नहीं मिली है, बल्कि अनगिनत बलिदानों की कीमत भी प्राप्त हुई है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम तिरंगे का सम्मान केवल राष्ट्रीय पर्वों तक सीमित न रखें, बल्कि अपने विचारों, व्यवहारों और कर्मों से प्रतिदिन उसका मान बढ़ाएं।
0: जी जी।
1: तो साथियों, हम आपको कहना चाहेंगे कि हम अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा करें, हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें, संविधान का सम्मान करें और आने वाली पीढ़ियों में भी राष्ट्र प्रेम की भावना को विकसित करें।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि जब तिरंगा सम्मानित होता है तब राष्ट्र का गौरव बढ़ता है, और जब राष्ट्र का गौरव बढ़ता है तभी सच्चे स्वराज का सपना साकार होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, पूरे मन से कहे कि तिरंगे का सम्मान ही राष्ट्र का अभिमान है, और राष्ट्र का अभिमान ही सच्चे स्वराज की पहचान है।
0: जी हाँ जागृति जी, जब जब तिरंगा आकाश में लहराता है तब तब वह हमें याद दिलाता है कि यह आजादी हमें विरासत में नहीं बल्कि अनगिनत बलिदानों की कीमत पर मिली है।
1: बिल्कुल।
0: हम केवल राष्ट्रीय पर्वों पर ही नहीं बल्कि अपने हर अच्छे कर्म से तिरंगे का मान बढ़ाएं, क्योंकि तिरंगे का सम्मान ही राष्ट्र का अभिमान है, और राष्ट्र का अभिमान ही सच्चे स्वराज की पहचान है।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, उम्मीद करते हैं कि बातें जरूर पसंद आई होंगी। और अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोनू, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हा? या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हा? ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो भाई, अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
4: होवे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
3: होवे, आज नाना ना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: माटी में जमी हूँ अनि माटी तकीस जानी जाऊँ हूँ। मैं खेत हंबारिया बीज बोया वो पसंद बहाई वो विश्रम करो तो पसे बाप दादा ने जमी माते मारो अधिकार के नती। सूरी जन्म तक की हकदार है। कानून ने आवात मानी है न पन्या पूटे रंग हक को ले सके न रिवाज अन सच ने बदली सके। बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार सूर्य नो हक इन्हें पहचान।
0: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है। सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
3: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
4: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके। शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
2: हिंडो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
3: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
4: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
3: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा। शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसार।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ एक बार फिर से कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके

अपनी साथी अंजलि पारेषर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जब भी हम हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी करियर, हमारी सफलता, हमारी खुशी, संतोष, अनुशासन, कई सारी चीजों को लेकर ढेर सारी बातें करते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि क्या हर शौक का करियर बनाना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में अक्सर यह सलाह सुनने को मिलती है कि अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लो। यह विचार कई लोगों के लिए प्रेरणादायक है, लेकिन क्या यह हर व्यक्ति पर लागू होता है? क्या हर शौक को रोजगार में बदल देना ही सही रास्ता है, या कुछ शौक ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम केवल अपने मन की खुशी के लिए जिए? आज कार्यक्रम में सबसे पहले हम जानते हैं शौक यानी कि हमारी रुचि क्या होती है। तो श्रोता साथियों, शौक वह है जिसे हम बिना किसी दबाव के अपनी खुशी के लिए करते हैं। किसी को गीत गाना अच्छा लगता है, किसी को चित्र बनाना तो किसी को बागवानी करना, किसी को किताबें पढ़ना तो किसी को खाना बनाना, किसी को लोक गीत या लोक नृत्य सीखना पसंद है। इन कामों में हमें आनंद मिलता है क्योंकि इन्हें करने के पीछे कोई मजबूरी नहीं होती। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि इन्हीं सारी चीजों पर कमाई का दबाव पड़ रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया के कारण आज हर शौक को करियर बनाने की बातें बहुत होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई अच्छा खाना बनाता है तो लोग कहते हैं कि YouTube पर चैनल बना लो। अगर कोई अच्छा गाता है तो उसे बोल देते हैं कि एल्बम निकालो। अगर कोई अच्छा फोटो खींचता है तो उसे कह देते हैं कि फोटोग्राफी बिजनेस शुरू कर दो। अगर कोई अच्छा लिखता है उसे कहते हैं कि पैसा बना लो। लेकिन क्या हर शौक का उद्देश्य केवल पैसा कमाना ही होता है? जी हाँ दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर कला का मूल्य पैसों से नहीं आंका जा सकता। कुछ हुनर दिल को सुकून देने के लिए होते हैं। जब शौक पर केवल कमाई का बोझ आ जाता है तो कई बार आनंद पीछे छूट जाते हैं। तो श्रोता साथियों, यही बात आती है कि जब शौक जिम्मेदारी बन जाए तब क्या करें? तो कल्पना कीजिए दोस्तों कि आपको चित्र बनाना बहुत पसंद है। आप रोज मन से चित्र बनाते हैं, लेकिन यदि वही काम रोज समय पर पूरा करना पड़े, ग्राहकों की पसंद के अनुसार बनाना पड़े, कमाई की चिंता से जुड़ जाए, तो संभव है कि वही आपकी जो रुचि है वो धीरे धीरे तनाव का कारण बनने लगती है। हर व्यक्ति इस बदलाव को सहजता से नहीं अपना पाता है और बहुत सी बार जिस काम को एक समय उन्हें बहुत करना पसंद होता है वही काम धीरे धीरे उनके लिए बोझ बनने लग जाता है। इसलिए श्रोता साथियों, अपनी रुचि के असली उद्देश्य को समझिए। जी हाँ, हर रुचि हमें गहरा उद्देश्य देती है। इससे हमारा मन हल्का होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, तनाव कम होता है, खुद को अभिव्यक्त करने का मौका मिल पाता है और जीवन में जो है संतुलन बना रहता है। यदि हमारी रुचि यह सब कर रही है तो वो हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, चाहे उससे एक रुपया भी हमें क्यों न कमाने को मिले। श्रोता साथियों, देखते हैं कि आज कई माता पिता बच्चों के हर शौक को प्रतियोगिता बना देते हैं। बच्चों को नृत्य पसंद है तो तुरंत प्रतियोगिता, गाना पसंद है तो तुरंत मंच, चित्रकला पसंद है तो तुरंत पुरस्कार की तैयारी। धीरे धीरे बच्चा आनंद के लिए नहीं परिणाम के लिए काम करने लगता है और कई बार उसकी रुचि से वह दूर हो जाता है। इसलिए श्रोता साथियों, हर प्रतिभा को मंच चाहिए होता है, लेकिन हर मंच प्रतियोगिता नहीं होता। यदि आपकी रुचि इतनी मजबूत है कि आप उसे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह निर्णय केवल उत्साह से नहीं, तैयारी, मेहनत और वास्तविक परिस्थितियों को समझ कर लेना चाहिए। और यदि आपने अपनी रुचि को केवल अपनी खुशी के लिए ही बचा कर रखा है तो इसमें कोई भी कमी नहीं है। दोनों ही रास्ते सम्मान के योग्य हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से हर शौक हमेशा करियर नहीं होता, ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से हमें हमारे जीवन में हमारी शौक यानी कि हमारी रुचि को समझने की जरूरत है और किस तरीके से हमेशा वह एक करियर का रास्ता नहीं हो सकती है। श्रोता साथियों, कुछ लोग सुबह पौधे की देखभाल करते हैं, कुछ लोग कविता लिखते हैं, कुछ लोग बांसुरी बजाते हैं, तो कुछ लोग गांव के बच्चों को निशुल्क पढ़ाते हैं। इसमें से हर काम से पैसा नहीं मिलता, लेकिन इनसे मिलने वाला जो संतोष है वो कई बार धन से भी बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, हर काम का लाभ बैंक खाते में नहीं दिखता, कुछ लाभ मन की शांति में दिखाई देते हैं। जिस शौक को आप बचा कर रख रहे हैं वही कई बार आपको जीवन की थकान से बचा लेता है। इसलिए दोस्तों, यदि शौक और करियर एक हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ऐसा न हो तो भी जीवन अधूरा नहीं होता। जरूरी यह है कि आप अपने शौक को पूरी तरह न छोड़ दें। हर सप्ताह थोड़ा समय उस काम के लिए निकालो जो आपको भीतर से खुशी देता है। जी हाँ दोस्तों, जब लोग केवल कमाई नहीं बल्कि अपनी रुचियों को भी महत्व देते हैं ना, तो समाज अधिक रचनात्मक बनता है। कहते हैं ना कि लोक कला बचती है, संगीत जीवित रहता है, पुस्तकें लिखी जाती हैं, चित्र बनते हैं, बच्चों को प्रेरणा मिलती है। यानी कि रुचि केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज को भी समृद्ध बनाती है। जी हाँ श्रोता साथियों, हर शौक को करियर बनाना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि हर इंसान के जीवन में ऐसा एक काम जरूर हो जिसे वह बिना किसी दबाव, बिना किसी तुलना, बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के केवल अपनी खुशी के लिए कर सके। कमाई जीवन की आवश्यकता है, लेकिन मन की शांति भी उतनी ही जरूरी है। यदि दोस्तों हम हर रुचि को केवल आय का साधन बना देंगे तो शायद धीरे धीरे जीवन से सहज आनंद कम होता जाएगा। इसलिए अपनी रुचि का सम्मान कीजिए। यदि वह करियर बन सके और आप तैयार हो तो आगे बढ़िए, यदि नहीं तो उसे जीवित रखिए, क्योंकि वही रुचि कठिन समय में आपके चेहरे पर मुस्कान लुटाने का कारण बन सकती है। कहते हैं ना कि हर सपना नौकरी नहीं बनता, हर रुचि व्यवसाय नहीं बनती, बल्कि हर सच्चा शौक इंसान को बेहतर जरूर बनाता है। कमाने के लिए काम कीजिए, लेकिन जीने के लिए अपनी रुचि को बचा कर रखिए, क्योंकि जीवन केवल रोटी कमाने का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि मन को जीवित रखने का नाम भी है। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों आपको कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे लिए यह भी समझना आवश्यक है कि जीवन का हर निर्णय केवल आर्थिक लाभ के आधार पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका मूल्य रुपये पैसे से नहीं बल्कि हमारे मन की शांति, आत्मसंतोष और जीवन की गुणवत्ता से तय होता है। कहते हैं ना कि शौक भी उन्हीं अनमोल चीजों में से एक है। यदि हम हर रुचि को केवल करियर और कमाई की दृष्टि से देखने लगे तो धीरे धीरे जीवन का वह सहज आनंद खो सकता है जो हमें भीतर से जीवंत बनाए रखता है। आज की दुनिया में सफलता की परिभाषा अक्सर आय, पद और प्रसिद्धि से जोड़ी जाती है, लेकिन यह भी सच है दोस्तों कि बहुत से लोग आर्थिक रूप से सफल होने के बाद भी अपने लिए कुछ समय निकालने की तलाश में रहते हैं। जी हाँ, इसका कारण यही है कि इंसान केवल काम करने के लिए नहीं बना बल्कि महसूस करने, सीखने, सृजन करने और अपने मन को अभिव्यक्त करने के लिए भी बना है। यदि जीवन में केवल जिम्मेदारियां हो और मन को खुशी देने वाली गतिविधियां न हो तो धीरे धीरे जीवन एक मशीन की तरह लगने लगता है। जी हाँ, हम अपने बच्चों को भी सिखाएं श्रोता साथियों कि हर रुचि का उद्देश्य प्रतियोगिता जीतना या पैसा कमाना नहीं होता। कोई बच्चा यदि संगीत सीखता है, चित्र बनाता है, पौधे लगाता है, लोकगीत गाता है या कहानियाँ लिखता है तो पहले उसे उस काम से प्रेम करना सीखने दीजिए। यदि भविष्य में वह उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहे और मेहनत के साथ आगे बढ़े तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि वह उस शौक को केवल अपने मन की खुशी के लिए जीवित रखना चाहता है तो यह भी उतना ही सम्मानजनक निर्णय है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समाज को भी अपनी सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमें हर प्रतिभा से यह प्रश्न पूछना बंद करना होगा कि इससे कमाई कितनी होती है, और यह प्रश्न पूछना शुरू करना होगा श्रोता साथियों कि इससे तुम्हें खुशी कितनी मिलती है, क्योंकि जो काम किसी व्यक्ति को भीतर से संतुष्टि देता है वही उसके व्यक्तित्व को संतुलित, रचनात्मक और संवेदनशील बनाता है। इसलिए दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगी कि हर हुनर बाजार के लिए नहीं होता, कुछ हुनर जीवन को सुंदर बनाने के लिए होते हैं।
अपने शोक को बचा कर रखिए, क्योंकि वही कठिन दिनों में आपके चेहरे पर मुस्कान, थके हुए मन में नई ऊर्जा और जीवन में नया उत्साह भर सकते हैं। कमाई जीवन चलाती है, लेकिन रुचियां जीवन को महकाती है। इसलिए ऐसा संतुलन बनाइए जहां काम आपकी जिम्मेदारियों को निभाए और आपकी रुचि आपकी आत्मा को जीवित रखे। यही संतुलन एक सफल नहीं बल्कि एक सार्थक और खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। तो श्रोता साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब समय हो चला है हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
2: वागर रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून।